जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

تویچو بوزان 90.0 ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی ہوں

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत करेंगे RJ सेजल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है घर परिवार अंक 4 आरजे सेजल के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है परवरिश और टेक्नोलॉजी। पहले समय में परवरिश और आज के समय के पालन पोषण में काफी अंतर आ चुका है। कहीं ना कहीं इस बदलाव में बदलती या कह लीजिए बढ़ती टेक्नोलॉजी का भी योगदान है, जो अब बड़ों के हाथ से निकलकर बच्चों के हाथ में आ गई है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति बालाजी, जो एक अध्यापिका हैं और पिछले 23 सालों से अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही एक सिंगल मदर भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सेजल, आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले श्रोताओं का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जैसे हम परवरिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके मुताबिक पहले समय की जो परवरिश होती थी और आज के समय में जिस तरीके से बच्चों की परवरिश हो रही है, उसमें आपको क्या अंतर लगता है?
1: पहले समय में ये होता था कि मदर्स जो थी ज़्यादातर होम मेकर्स होती थी और घर पर ही रहती थी, लेकिन आजकल के बदलते हुए दौर में ये देखा गया है कि मदर्स जो है वो ऑफिस जाती हैं, बाहर काम करने जाती हैं, तो उसमें बच्चों को पालन पोषण में काफ़ी परेशानी होती है। पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे हम अभी हमने ये सुना है कि बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, उनको मित्र के जैसे रखना चाहिए, लेकिन पहले टाइम में ये सब नहीं था। जब हम छोटे थे तो हमारी मदर जो थी हमारे साथ एक मदर की तरह ही बिहेव करती थी, कभी एक मित्र की तरह हमसे बात नहीं करते थे और हमें डर होता था उनका। कोई भी बात है, कोई गलत बात करने से पहले हमें ये होता था कहीं मम्मी देख ना ले, कहीं पापा देख ना ले, या कह लो कि एक डिस्टेंस होता था, हमें डर होता था। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं वो बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करती हैं, ये अच्छी भी बात है, ये कि एक गलत बात नहीं है, लेकिन वो इतना फ्रेंडली हो जाती हैं कि बच्चों में जो एक मदर और एक बच्चे का डिस्टेंस होना चाहिए वो भूल जाता है। आप ये सोच लो कि कोई भी बात अगर उन्हें कोई खटकती है तो अब वो एकदम से नेट पे सर्च करती हैं, अगर बच्चा ये कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये कर रहा है तो क्या करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उनके पास बड़े नहीं होते। आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते
0: जी।
1: तो ये थोड़ा एक तरह से माइनस पॉइंट होता है कि हम नहीं पूछते किसी से यहाँ से, तो मतलब नेट तो नेट ही है, वो क्या आपको दिखाए इसका कुछ पता नहीं है।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन चुका है कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन लेने के लिए हम कहीं ना कहीं इंटरनेट की ओर ही भागते हैं। आज टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप टीचर भी हैं और एक मदर भी हैं, ज़्यादा मुश्किल स्कूल में बच्चों को संभालना होता है या घर में बच्चों को संभालना होता है?
1: देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर पे हो चाहे बाहर हो, बच्चों को तो संभालना मुश्किल होता ही है। लेकिन ये होता है कि आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं मदर्स से भी बात करती हूँ तो मदर्स मतलब यही बोलती हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे कंट्रोल में नहीं है, 24 घंटे फोन पे लगा रहता है। लेकिन मैंने ये हमेशा उनको बोलती हूँ कि अभी बच्चा छोटा है, जो छोटा बच्चा होता है ना वो इमोशनली अटैचमेंट होती है उसके साथ। हम क्लास में भी ये ऐसे करते हैं कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर तू ये पढ़ेगा तो मैं तेरे को मतलब क्लैपिंग करवाऊंगी क्लास में, ऐसे मोटिवेशन करते रहते हैं बच्चों की। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं ना वो खुद ही फ़ोन पे बिजी रहती हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा मतलब ये रूटीन है, मैं जब भी क्लास में एंटर करती हूँ ना सबसे पहले 5-10 मिनट बच्चों को मोटिवेशनल थोड़ी स्पीच देती हूँ, उनको एथिक्स समझाती हूँ, बेसिक नॉलेज देती हूँ बच्चों को कि अपनी जो मदर है उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या कुछ ऐसी गाइडेंस सुबह ही देती हूँ ताकि सारा दिन बच्चों का माइंड जो है ना वो सेट रहता है।
0: जी, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कम उम्र में ही उनको इस कॉन्फिडेंस की, इस मोटिवेशन की बहुत ही कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में।
1: जी
0: आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि पहले टाइम में कंपैरिजन होता था बच्चों को लेके, कि रिलेटिव्स के साथ बच्चे कंपेयर करते थे पेरेंट्स, कि कोई पढ़ाई में अच्छा है, हमारा बच्चा नहीं अच्छा। लेकिन आज के समय में आप कह लीजिए कि तुलना अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों से हटकर अब दुनिया तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारे हाथ में फोन है, हम रील्स देखते हैं, इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं, तो देश दुनिया के कई सारे बच्चों का हमें टैलेंट दिखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बच्चों में कमी ढूंढने लग जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि किस तरीके से इस चीज को ठीक कर सकते हैं?
1: हम ये अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इंटरनेट पे बच्चों की काबिलियत देख के, दूसरे बच्चों की काबिलियत देख के, उनकी पोस्ट देख के चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सेम वैसे ही ढंग से करे। लेकिन मेरे नज़र में ये चीज़ गलत है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और उसी ढंग को अपनाते हुए हमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आज के समय में जैसे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट काफी आगे बढ़ चुका है, और ऐसी रील्स जो है स्क्रॉल करते करते हमारे सामने आ ही जाती हैं, और उन्हें नजरअंदाज करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी रील्स हर पेरेंट्स की सोशल मीडिया फीड पर ना जाने ही कितनी ही होंगी। तो अब ऐसे में आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, यहाँ पे तो ये है कि जो रील्स में हमें दिखाया जाता है, हम उसी पहलू को देखते हैं। क्या आपने उनके घर की व्यवस्था देखी है कि वो घर में बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या बिहेव करते हैं? हमें सिर्फ मीडिया में काफ़ी टाइम की मशक्क़त के बाद एक 5-10 मिनट की, या कह लो कुछ सेकंड्स की वीडियो दिखाई जाती है, और उनका एक ब्राइट पार्ट ही बच्चे का दिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका घर कैसा है, उनका रहन-सहन कैसा है, ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखते हुए हमें अपने बच्चों को उन पे नहीं थोपना चाहिए। आप बच्चे की खुद की काबिलियत देखिए और बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना चाहिए।
0: जी हाँ, बच्चों की उम्र भी बहुत कम होती है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि उनके लिए सब एनवायरनमेंट भी नया है, ये सब चीज़ें भी नई हैं, फ़ोन भी उनके लिए नया है। जो पेरेंट्स हैं वही एक तरीके से बच्चों को हर एक चीज़ से, हर एक पहलू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका पेरेंट्स की ही रहती है इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन बच्चों का मोरल भी डाउन करता है। इसी जगह अगर हम उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही आप बच्चों को काफी समय से पढ़ाती आ रही हैं, तो आपके मुताबिक उन्हें किन एक्टिविटीज के द्वारा अपने साथ जोड़ा जा सकता है?
1: एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं। जैसे मेरे खुद के दो बच्चे हैं,
0: जी,
1: तो जब वो छोटे थे ना, मुझे याद है मेरा बड़ा बेटा UKG में था, तब से मैंने उसको इंडिपेंडेंट बनाया।
0: जी
1: मैं खुद जॉब करती थी, मैं स्कूल चली जाती थी, तो मैं बच्चे को बोलती थी कि बेटा घर को लॉक ऐसे लगाना है, अच्छे से चेक करना है, ताला खींच के देखना है ताला लग गया है कि नहीं, उनको पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरा अरेंज करके सुबह नाश्ते में दे दिया खाने को। वो स्कूल से जल्दी आ जाते थे, मैं लेट आती थी घर, तो मैं खाने के लिए कुछ रख जाती थी कि ये आपने स्कूल से आके ये करना है, यूनिफॉर्म उतारनी है, और उनको काम दे जाती थी करने के लिए कि आपने ये लर्न करके रखना है, मैंने आते ही सुनना है। और मैंने शुरू से ही उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया। जैसे उनकी वार्डरोब जो थी वो अलग कर दी कि बेटा अपने जो क्लोथ्स हैं वो खुद ही रैप करके अलमीरा में रखने हैं, और संडे के संडे मैं खुद बच्चों को बोलती थी अपनी अलमीरा के कपड़े निकालिए, उसको अच्छे से अरेंज कीजिए। और जब मैंने किचन में काम करती थी, कभी उसको प्याज दे देना छीलने के लिए कि बेटा ये प्याज छीलो, मेरी हेल्प करो, तो बच्चे बड़े खुश होते थे इन चीज़ों के लिए। तो लेकिन मेरे को लगता है कि आजकल की माएँ ये हेल्प नहीं लेती हैं, बच्चों को खुद जो है मोबाइल पकड़ा दे देती हैं कि वो मोबाइल लेके अपना बिजी रहेंगे और हम अपना काम कर लेंगे।
0: जी, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा पैम्पर भी किया जाता है, ताकि पेरेंट जो है, अगर वर्किंग वुमेन भी हैं, वो अपना काम ठीक से कर सकें और बच्चे शरारतें ना करें। तो कहीं ना कहीं फ़ोन का आजकल सहारा लिया जा रहा है, और एज एन टीचर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्लासरूम में बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है, तो आप किन तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को करने के लिए कहती हैं ताकि वो क्लास में एक तो बिजी रहे और मेंटली भी क्रिएटिव रहे?
1: रीडिंग वगैरह बच्चे करते रहते हैं, कभी लर्निंग होगी, टेस्ट हो गया, ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ये सब करने के बाद जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनको जैसे वर्ड चेन कुछ ऐसी गेम्स खिलाती हूँ कि चलो बेटा, जैसे मैं क्लास में जितने भी बच्चे हैं अ लेटर से जितने हैं वो खड़े हो जाओ और मुझे 5-5 कोई वर्ड्स न्यू बना के अ लेटर से ही सुनाओ, तो ऐसी मैं गेम्स खिलाती रहती हूँ। फिर बच्चों को मतलब बच्चे घर पे भी बिजी रहें उसके लिए, जैसे मान लो उनकी पेंसिल बॉक्स है, कई बच्चों की बहुत सी अनटाइडी हो जाती है, पेंसिल शॉप करते हैं तो वो ब्लैक सी हो जाती है, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा देखो आप घर में नहाते हो ना, तो आपने क्या करना है घर जाके अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है, तो उसमें जैसे सॉक्स में साबुन डाल लिया, उनको पूरा ढंग बताती हूँ कि फिर मैं उनको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं खुद अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ये देखो पेंसिल बॉक्स आपकी अनटाइडी हो गई है, इसको वॉश करो, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं घर पे बिहेव करती हूँ एज अ मदर, उस तरह से मैं स्कूल में आपकी मम्मा हूँ, तो आप जैसे मैं बोलूंगी वैसे मैंने कल देखनी है सबकी पेंसिल बॉक्स साफ होनी चाहिए, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। सुबह जब नेक्स्ट डे आते हैं तो मुझे दिखाते हैं, देखो मैम ये मेरी पेंसिल बॉक्स देखो कितनी सुंदर सी लग रही है, मैं भी नहाया था और मेरी पेंसिल बॉक्स भी नहाई थी, और इसी तरह से वाटर बॉटल भी, और पेरेंट्स भी खुश होते हैं जब वो पीटीएम पे आते हैं ना तो मेरे से डिस्कस करते हैं कि मैम देखो आपने ऐसा बोला था बच्चों को करने के लिए, घर आके हमें बोलते हैं कि मैंने अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है, अपनी बॉटल को भी साफ करना है। क्लास में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, जैसे डिस्प्ले बोर्ड को हम डेकोरेट करते हैं तो बच्चों की मैं हेल्प लेती हूँ कि बेटा देखो ये जो चार्ट मैं लगा रही हूँ ये ठीक है, ये ऊपर तो नहीं है नीचे तो नहीं है ऐसे, तो स्टेपल पिन के साथ उनको मतलब सिखाती हूँ कि ये देखो ऐसे स्टेपल करते हैं, इस तरह से आप घर में भी मम्मा की हेल्प किया करो, अरेंज किया करो, चीज़ें ब्यूटीफुल रखा करो, जिस तरह आप अपने घर को ब्यूटीफुल रखते अपनी क्लास को भी ब्यूटीफुल रखें, इस तरह से काफी हम एक्टिविटीज करते रहते हैं क्लास में और बच्चे बहुत खुश होते हैं।
0: जी कहीं ना कहीं माँ के बाद स्कूल में ही टीचर जो है, दूसरे गुरु जो होते हैं हमारे, वो ही रोल प्ले करते हैं बच्चों को अच्छे से परवरिश देने में, उनके हर एक चीज मॉरल एथिक्स सिखाने में।
1: हाँ जी,
0: तो टीचर्स का भी एक अच्छा रोल रहता है। साथ ही अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट होने की, कि बच्चों को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और आज का टाइम भी ऐसा ही है कि बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंसी के बारे में सिखाना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन सी एज ठीक रहती है कि बच्चों को हम अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू करें, उन्हें नई नई चीजें सिखाना शुरू करें कि वो मेंटली इतने एक्टिव रहते हैं कि ये काम कर सके वो?
1: देखिए ऐसे तो बच्चों की कोई एज नहीं होती
0: जी,
1: आजकल के बच्चे तो कह लो कि जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं
0: जी,
1: हमारे टाइम पे ये था कि हमें कोई चीज समझने में काफी टाइम लग जाता था कि जैसे आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जैसे हाथ जब उनका चलना शुरू हो जाता है तो मोबाइल पे ऐसे हाथ चलाते हैं जैसे सारा सिस्टम पता है, हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन ये है कि अगर हम इसी चीज का फायदा उठाते हुए बच्चे को शुरू से ही इंडिपेंडेंट कर ली, क्योंकि आजकल मदर्स जो हैं मोस्टली जॉब करती हैं, तो फोन में ना लगाते हुए मदर्स जो हैं बच्चों को उसी लाइन में मोटिवेट करें, जैसे घर में अपने काम में हेल्प लें बच्चों से, या कुछ अच्छा सिखाएं, अच्छा दिखाएं, जैसे कि मान लो कि मैं ये चाहती हूँ कि अपने कल्चर के साथ अपने रिलीजन के साथ भी टच होना चाहिए बच्चों को शुरू से ही, जैसे हम सुबह उठें सबको नमस्ते या जो भी आप बोलते हो वो बोलें, उनसे उनको बताएं कि भगवान जी के बारे में ऐसी चीज़ें बताएं, मतलब उनको ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए शुरू से ही बच्चों को, तो ऐसे होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना तो बच्चे ये देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा जो हैं हमें ये चीज़ें बताते हैं अच्छी बातें, बच्चे तो बच्चे होते हैं उनको ये भी पता होता है कि ये बात अच्छी है और ये बात मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही, शुरू से ही हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप जैसे देख रहे हो कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम अगर बच्चे को वो शुरू से ही ये आदत डालें तो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा ये चीज़।
0: जी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से भी जो हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर्स हैं, काफ़ी ट्रेडिशंस हैं, काफ़ी रिलीजन्स हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत देश भी है हमारा, और बच्चों को हर एक कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए, खासतौर के अपने कल्चर के बारे में, जिस कल्चर में वह रहते हैं, जो उनकी मदर टंग है, जिस भी प्रकार से आपके घर में ते फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं।
1: जी जी।
0: साथ ही अभी हम बातें बहुत करेंगे और भी करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का। और आप गीत भी जरूर सुनती होंगी। आपका कोई पसंदीदा गीत हो जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो प्लीज आप गुनगुनाएं जरूर।
1: जब भी मैं कभी मेरे मन पे किसी तरह का भी बोझ होता है या कुछ भी मेरा मन ऐसे विचलित होता है तो मैं हमेशा यही सॉन्ग गुनगुनाती हूँ और क्लास में इवन बच्चों को भी सुनाती हूँ। बहुत अच्छे से बोल है इसके
0: जी।

स्वागत है आप सभी का एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब वापस रुक करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है परवरिश और टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं कंपैरिजन के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, कि बच्चों को किन एक्टिविटीज के जरिए अपने साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, जहां मदर्स जो हैं वो वर्किंग हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है जैसे बच्चे जब खाना नहीं खाते, ज़्यादा शैतानी करते हैं, उन्हें फ़ोन देकर बिठा दिया जाता है। फ़ोन के बारे में भी अभी हमने काफ़ी बातें की वैसे। और हाँ, बच्चों

0: को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाना हमारे लिए तो आसान काम है ही, लेकिन यह उनके मन मस्तिष्क पर भी काफी बुरा असर डाल सकता है। तो इसके बारे में दीप्ति जी आपका क्या कहना है?
1: जी सेजल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने अपने सराउंडिंग्स में ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि पहले तो बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना, तो मदर्स क्या करती हैं, वो उनको बोलती हैं कि बेटा मैं आपको ना अभी फोन पे ना एक वीडियो दिखाती हूँ, आप सिर्फ 5 मिनट्स उसको देखो, और उसी दौरान वो बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देती हैं। जो बच्चा पहले कह रहा है मुझे भूख नहीं है, तो वो फोन जैसे ही मदर ऑन करती है तो बच्चा खाना शुरू कर देता है, वो बाइट देते जाती हैं, वो खाता जाता है। इस दौरान ये होता है कि बच्चा जिस तरह का प्रोग्राम देख रहा है ना, बच्चे की एक्साइटमेंट वैसी हो जाती है, तो बच्चा क्या करता है कि कभी बार तो बिना चबाए ही उसको भोजन को अंदर निगल लेता है
0: जी।
1: तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ये गलत बात है। बच्चे को कभी भी खाना खाते हुए फ़ोन देना ये बहुत गलत बात है, ऐसा मदर्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों की पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बच्चे भोजन चबाते नहीं हैं अच्छे से, अच्छे से खाना खाते ही नहीं है। वो एक्साइटमेंट के दौरान, जैसे कोई एक्साइटमेंट सीन आ रहा है तो वो उसके दौरान बच्चे फटाफट चबा लेते हैं या ध्यान ही नहीं देते, और बच्चा क्या खा रहा है बच्चे को वो भी नहीं पता, बच्चे को उसका टेस्ट ही नहीं पता चलता चीज़ का कि हम खा क्या रहे हैं, कौन सी वेजिटेबल खा रहे हैं, और उसको कोई जानकारी नहीं होती। और इस चीज़ के बाद ये है कि एक तो बच्चे की पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, दूसरा उसकी आंखों पे असर पड़ रहा है क्योंकि वो साथ में फ़ोन देख रहा है। इसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढे, या मतलब उनको देखना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे जो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपनी आंखों का भी ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सेंसेस उस टाइम पर डेवलप हो रही होती हैं, उनका शरीर फिजिकली तौर पर भी वो डेवलप हो रहे होते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, क्रिएटिविटी लेवल पर हर एक तरह से असर डलता है। क्योंकि जब खाना ही वह अच्छे से नहीं खाएंगे तो वो शरीर को लगेगा ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं आ पाएगी। तो अब प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई है कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है अगर हम बच्चों को फोन दिखाकर खाना खिला रहे हैं, तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? हम बच्चों को किस तरीके से खाना भी खिला पाए और वो बच्चे फोन की तरफ भी ना भागे?
1: देखिए, ये तो आपको पता ही है बच्चों को जो है कहानियां बहुत पसंद है।
0: जी,
1: मान लो कि आप कोई सब्जी खिला रहे हो बच्चों को, आप उसी सब्जी के रिलेटेड कोई कहानी बना ले, जैसे उनको बोलें कि बेटा ये देखो ये ग्रीन कलर की वेजिटेबल है, ये अगर हम खाएंगे ना हमारे पास बहुत ताकत आएगी। उनको बताइए कि ये पालक की सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, एक तो उनको वेजिटेबल्स का पता चल जाएगा, और उनको आप मतलब इस ढंग से एक बाइट तोड़िए, उनको ऐसे कोई एरोप्लेन बनाइए, ये देखो बेटा ये एरोप्लेन आ रहा है, मुंह खोलो आप, ये एरोप्लेन आपके मुंह में जाएगा, यूं करके ऐसे। मैंने तो मतलब अपने बच्चों को बचपन में भी चीजें अगर खिलाई है ना तो इस ढंग से ही कहानियां बना बना के, और बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग वे से ये चीजें देखते भी और सुनते भी हैं। ये नहीं कि मोबाइल के द्वारा ही बच्चे एंटरटेन होते हैं, बच्चों को अपनी माँ की बताई हुई कहानियां भी बहुत पसंद होती हैं। तो इसी तरह से बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। आप बच्चों को किसी और ढंग से खाना खिलाएंगे, बच्चे वो ढंग सीखेंगे, अगर आप फोन देंगे तो बच्चे फोन वाला ढंग सीख जाएंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एज अ मदर बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं।
0: जी, अब तो ये जैसे खाने की हमने बात कर ली कि खाना हम बच्चों को कैसे दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अब कुछ बड़े हो चुके हैं, बच्चों को आदत डल जाती है फोन की, अब वो आदत छुड़ाना भी मुश्किल है। तो खाने के बाद खाना हम कहानियों से खिला देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं फोन ही चाहिए। तो उस जिद को कैसे तोड़ें और बच्चों को किस तरीके से वहां से डाइवर्ट किया जाए, कैसे उन्हें वास्तविकता से परिचय दिलाया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो माओं को खुद फोन छोड़ना होगा। ये चीज मैंने एज अ टीचर भी देखी है कि मदर्स खुद फोन में बिजी रहती हैं, बच्चे भी तो वही चीज देखते हैं। अगर बच्चे मान लो स्कूल से घर आ गए हैं तो मदर्स जो हैं कभी पूछती भी नहीं है बेटा स्कूल में क्या किया, मैम ने क्या करवाया, ये चीजें नहीं पूछेंगे। तो हमें सबसे पहले तो खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, और आप बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाइए। जैसे बच्चों को मान लो संडे के संडे छुट्टी होती है, आप बच्चों को बोलो बेटा हम ना आपको पार्क में लेके जाएंगे, तो बच्चे क्या होते हैं सोशलाइज भी होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो पार्क में जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व होएं, बच्चों के साथ खुद खेलें। जैसे मेरे बेटे हैं तो जब मेरे को याद है वो छोटे थे ना, तो उनको क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था, तो मैं क्या करती थी, मैं खुद उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। इवन की काइट फ्लाइंग में मैंने उनकी बहुत मदद की है, मैंने खुद अपने बच्चों को सिखाया है कि काइट कैसे उड़ाते हैं। इससे क्या होता है कि मदर्स और बच्चों का इंटरेक्शन भी बढ़ती है और बच्चे खुद ही अपनी बातें जो है मदर से शेयर करते हैं कि माँ हमारे साथ बच्चा बन रही है, हमारे जैसे ही खेल खेल रही है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस ढंग से।
0: जी, कहीं ना कहीं मदर और बच्चे की भी बॉन्डिंग बनती है और आगे जाकर कभी बच्चा दिक्कत महसूस करता है अपनी जिंदगी में तो उसे आसानी होती है कि अपने पेरेंट्स से वो शेयर कर पाए और उसका सलूशन उन्हें मिल सके, क्योंकि पेरेंट्स को जितना एक्सपीरियंस हो चुका होता है लाइफ का, कहीं ना कहीं बच्चों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है।
1: जी,
0: अब आप एक टीचर हैं तो आपके पास ऐसे पेरेंट्स भी आते होंगे जो काफी आपके इश्यू लेकर आते होंगे कि बच्चे जो हैं बात नहीं सुनते, बहुत जिद्दी हैं या बहुत ज्यादा शरारती हैं, कि उन्हें किस तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत क्लेवर हो चुके हैं क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और टीचर्स के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना। तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से टैकल करते हैं और क्या आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से इस चीज को टैकल करें?
1: जी सेजल, ये तो है, बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं आजकल के, उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी क्लास में भी कुछ बहुत नोटी बच्चे हैं, टॉकेटिव भी हैं और ऐसे जैसे बैठे बैठे ही कोई शरारत कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो मैं इन बच्चों को टैकल करने के लिए क्या करती हूँ कि बच्चों को ड्यूटीज देती हूँ।
0: जी,
1: कि क्लास में जैसे बेटा आपने जब सुबह आना है लाइट्स ऑन करनी है और डिस्पर्सल टाइम आपकी ड्यूटी है आपने लाइट्स ऑफ करनी है। तो ऐसे शरारती बच्चों को इसी तरह की क्लास की कोई ड्यूटी दे देती हूँ तो बच्चे जो है ना अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मैम ने हमें ड्यूटी दी है तो हमें कुछ स्पेशल होगा, तभी तो हमें ड्यूटी मिली है, ऐसे थोड़ी ना मिली है। कई बार बच्चों को क्लास को मॉनिटर बना देती हूँ कि बेटा आप आज से ना क्लास के मॉनिटर हो, तो मैं कभी भी बाहर जाऊँ तो आपने क्लास को कंट्रोल करना है पीछे से। तो ये होता है कि एक तो उनकी शरारतों पे ध्यान नहीं जाता, उनकी शरारतें कम हो जाती हैं और मेरा भी काम हो जाता है। ऐसे बच्चों को ऐसे ही टैकल किया जाता है। ये चीज़ है कि जो बच्चे जितने शरारती होते हैं ना वो बच्चे पढ़ने में भी उतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये चीज़ हमेशा मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। यही मदर्स को कहना चाहती हूँ कि आप भी घर पे बच्चों को कोई ना कोई टास्क दें, कोई काम दें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जिससे बच्चों को थोड़ा प्राउड फील हो और बच्चों की शरारतें जो है ना वो अपने आप कम हो जाएंगी।
0: साथ ही कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ की पर्सनैलिटी ही एक्सट्रोवर्टेड होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के, शाय पर्सनैलिटी के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। लेकिन आज के टाइम पर कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, उन्हें सोशलाइज करना सिखाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ आज के टाइम पर बाहर निकलना, दुनिया में रहना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो उस हिसाब से बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है?
1: देखिए, स्कूल में तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बहुत से टास्क होते हैं।
0: जी,
1: जैसे कि सुबह की असेंबली होती है, हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं उसमें, जैसे राइम्स बोलना, कंपेयरिंग करना, छोटे छोटे काफी टास्क होते हैं। जैसे क्लास में ही बच्चों को कोई गेम खिलाई जाती है, और हम पेरेंट्स को भी ये चीज बोलते हैं कि बच्चों को आप घर में मोबाइल के साथ टचिंग नहीं रखें बच्चों की। जैसे छुट्टी होती है, पेरेंट्स को भी संडे सैटरडे वीकेंड में छुट्टी होती है, कहीं किसी दिन त्यौहार पे छुट्टी होती है, तो हम पेरेंट्स को भी ये बोलते हैं कि बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाइए, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखिए और बच्चों को थोड़ा सोशलाइज कीजिए, बड़ों से बात करवाइए ताकि बच्चे जो हैं अपने मन के भाव जो हैं वो शेयर करते हैं। ये चीज़ हमने ना रिसेस टाइम में बहुत देखी है कि जो बच्चे क्लास में शाये होते हैं ना कोई कोई डर होता है, लेकिन वो रिसेस के टाइम बच्चों की लैंग्वेज, उनकी टोन सब चेंज हो जाती है। तो उसी से हमें मतलब थोड़ा एस्टिमेट हो जाता है कि नहीं, ये शाई नेचर का नहीं है, इसकी हेसिटेशन इंप्रूव करने की थोड़ी नीड है। तो एज अ टीचर हम उस पर फिर वर्क करते हैं।
0: जी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रिसेस टाइम पे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि आसपास बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्तों के पास वैसे ही बच्चे एक फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं।
1: जी।
0: तो साथ ही अब और बातें भी करेंगे, हॉबीज के बारे में बच्चों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब वक्त है एक और म्यूजिकल ब्रेक का और आपकी मधुर आवाज में एक गीत का।
1: जी, एक और सॉन्ग है जो कि मुझे गुनगुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक ये सॉन्ग सब लोगों को पसंद होगा। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये रुलाए,

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और कार्यक्रम चल रहा है घर परिवार। अभी हम बात कर चुके हैं आज के समय की परवरिश की, मोबाइल के योगदान की, और इससे बचा कैसे जा सकता है। अब वक्त है बात करने का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में और हॉबीज के बारे में। आज के समय में बच्चे मल्टीटास्कर बन रहे हैं और माता पिता भी उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैम, आपका क्या इस पर विचार है?
2: देखिए, हमारे टाइम में क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोला जाता था, और हम भी ऐसा ही करते थे, पढ़ाई पे ही ध्यान होता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे तो कोई ध्यान नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से आजकल मीडिया में सारा दिखाया जा रहा है, बच्चे इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे। तो ये अच्छी बात है, बच्चों को ऐसा करवाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों को पूछ के, ये नहीं कि पेरेंट्स जो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ही बच्चों को कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उसमें ये होगा कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, सिखाने के बावजूद भी बच्चा वो चीज़ नहीं सीखेगा। ये अच्छी बात है, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। घर के आसपास जो भी कोई एकेडमी कुछ भी हो, बच्चों को वहाँ पर भेजिए और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनमें पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि आपको भी सहूलियत रहे, आप आसानी से उसको छोड़ने जा सकें, लेने जा सकें।
1: और जैसे आज के टाइम पे कंपटीशन काफी बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू पहले का टाइम जो रहा, और खास तौर पर ये कंपटीशन का प्रेशर कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी बना रहता है कि किस तरीके से अपने बच्चे को इस कंपटीशन में आगे बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों पर भी इसका असर पड़ता होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं?
2: मैं यही बात आपको बोलूंगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए, उनको काम रहना चाहिए
1: जी।
2: मतलब ये नहीं कि अगर कोई दौड़ चल रही है तो उसमें आप चाहें कि आपका बच्चा भी दौड़े, ऐसा करेंगे तो आप खुद प्रेशर में रहेंगे, आप बच्चों को क्या संभालेंगे। इसीलिए आपको प्रेशराइज नहीं होना है, आपको प्रेशर में नहीं रहना है, ठंडे मन से सोचिए। आप बच्चे की पहले रुचि पूछिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग ही बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए, और बच्चे को हर मुश्किल में संभालने के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ही तैयार नहीं होंगे, बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, उसका सलूशन कैसे निकालेंगे। हाइपर नहीं होना आपको, आपको भी बच्चे के साथ ही जैसा बच्चा चाहे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ढलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चे की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है
2: जी,
1: क्योंकि
2: जी।
1: हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है
2: जी।
1: साथ ही पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा हॉबीज क्लासेस, चाहे वो विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो या एग्जाम्स के बाद जो वेकेशन आती हैं, उनमें चाहते हैं कि बच्चे कुछ नई चीजें सीखे। तो एज एन पेरेंट कौन सी वो उम्र बच्चे के लिए ठीक रहती है कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ज्वाइन करें, या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सी एज हमें रखनी चाहिए कि उस एज में बच्चा जो है एक्टिविटी सीख सकता है या नई एक्टिविटी उसके लिए इंट्रोड्यूस करनी चाहिए?
2: जी देखिए, शौक का या हॉबी का उसको सीखने की कोई एज नहीं होती
1: जी।
2: ये तो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कब और कैसे हॉबी क्लासेस या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। आप बच्चे पे कोई चीज़ थोपे ना, बच्चे जब ही खुद कहें तब आप उनको पार्टिसिपेट करवाइए, अपनी मर्जी से नहीं, और ना ही उन पे कोई प्रेशराइज करके उनको किसी चीज़ पे एक्टिविटी को अटेंड करने के लिए बोले।
1: आपकी क्लास में भी कई ऐसे बच्चे होंगे, जैसे हर साल नई क्लास आती है, नए बच्चे आते हैं, तो बच्चों का इतना पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा किस लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकता है, किस चीज़ में अच्छा है। तो आप ऐसी क्या ट्रिक अपनाती हैं बच्चों को समझने के लिए या बच्चों की एक्टिविटीज़ जानने के लिए कि बच्चा किस एक्टिविटी में रुचि रखता है?
2: जैसे कि हमारे फुल वीक में एक डे ऐसा होता है जब हम स्टोरी टेलिंग कोई कहानी सुनाते हैं
1: जी,
2: तो बच्चे बड़े खुश होके वो कहानी सुनते हैं। इसी तरह से मैं भी कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आप भी कोई कहानी सुनाओ, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वो करके दिखाओ। तो बच्चे जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बच्चा कहता है मैम मुझे गाना आता है, मैं गाना सुनाऊं, मैं डांस करके दिखाऊं, मुझे एक अच्छी कहानी आती है, मुझे ये चीज़ बनानी आती है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की ये चीज़ बनानी आती है, मैम मुझे ड्राइंग करनी आती है ये। फिर हमें बच्चों से ऐसी टचिंग रखने से बच्चों का पता चल जाता है कि बच्चे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पीटीएम पे हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है इस चीज़ को बड़े अच्छे से कवर करता है, तो आप इसको उस पर पार्टिसिपेट करवाइए। हम काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इस चीज़ में। मैंने ये चीज़ देखी है कि इवन कि बच्चे जब रिसेस में खाना खाते हैं ना लंच ब्रेक में, तो मतलब मुझे ये इवन पता होता है कि बच्चे को ये वाली वेजिटेबल जो है ना ये पसंद नहीं है, ये बच्चे को ये वाली वेजिटेबल पसंद है। तो जब हम पीटीएम पे पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं तो मैं पेरेंट्स से कई बार ये शेयर करती हूँ कि आपका बेटा जो है या बेटी जो है वो ये चीज़ नहीं अच्छी उसको लगती, उसको ये खाने में ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि मैम आपको कैसे पता है, हमें तो बच्चे कभी ये चीज़ बताते नहीं है। तो मतलब टीचर जो है ना वो मतलब बच्चों के साथ अगर अच्छे से इंटरेक्ट करे तो बच्चे अपनी मन की बात आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स के साथ शेयर करते हैं।
1: कहीं ना कहीं आपकी बातों से अगर हम एक कंक्लूजन की कोशिश करें तो यही निकलता है कि बच्चों को जानने की जो चाबी है, उनके रहस्य का जो ताले की चाबी है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन ही एक ऐसी की है जिससे बच्चों को जाना जा सकता है, बच्चों को समझा जा सकता है, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसी वो क्या चीज़ें अपने मन में रखते हैं, किस इंटरेस्ट में रहते हैं, क्या शौक रखते हैं। हम मानते हैं कि क्लास में टीचर्स बोलते हैं कि ज़्यादा बातें नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें करना भी ज़रूरी है ताकि बच्चों को हम जान सके।
2: जी जी।
1: और एक मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि एज एन टीचर आप बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगी, और देश के विकसित होने में एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में टीचर की बहुत एक अहम भूमिका रहती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपका अब तक कितना योगदान रहा?
2: मेरे खुद का 23 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं बच्चों को कुछ नई नई बातें सिखाती हूँ। मेरे को अगर घर में भी कोई परेशानी हो या कुछ भी हो तो मैं स्कूल आके सब भूल जाती हूँ, कि बच्चों के हंसते हुए चेहरे देख के, बच्चों से बातें करके मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कोई परेशानी थी। ये सोच लो कि 5-6 घंटे मैं तो दूसरी दुनिया में रहती हूँ, कि अपनी दुनिया होती है। तो एज अ टीचर भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि टीचर्स अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करके। इवन टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे एक गलत राह पे चल रहे हैं, तो एक टीचर अगर बच्चे को गाइड करे ना तो आई थिंक कि मदर से ज़्यादा वो टीचर की बात सुनते हैं। तो टीचर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ये बिल्डर्स हैं, देश को बनाने वाले टीचर्स ही हैं। तो जिसने भी ये चीज़ कही है ना, तो ये फैक्ट है कि टीचर अगर चाहे तो बच्चों को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना नहीं। अगर पेरेंट्स टीचर को सपोर्ट करें तो हम बच्चे को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं, उनकी मन की बात समझ सकते हैं। और मैं मदर्स को, आजकल की मदर्स को यही मैसेज दूंगी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और जितना रोल एक मदर का है ना उतना ही फादर का भी है। ये नहीं कि फादर अगर जॉब करते हैं तो फादर को बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। आप भी बच्चों से पूछिए कि आज स्कूल में बच्चे ने क्या किया, टीचर ने क्या करवाया, बेटा आपने डायरी लिखी है, आपने मैम ने कोई टेस्ट दिया है। दोनों का उतना ही रोल है जितना कि एक टीचर का है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़िए, जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको पाला है, मैं यही चाहती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स भी उतने ही प्यार से, उतने ही निकटता से अपने बच्चों के साथ संबंध बनाइए और उनकी मन की बातें समझिए, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे आपसे दूर ना हों।
1: और जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा?
2: मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी मिली, मैंने अपने मन की बातें जो हैं वो शेयर की यहाँ पे आके। और सेजल आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे, कहीं ना कहीं इन्होंने मेरा पुराना वक्त मुझे याद दिला दिया, अपने बच्चों के साथ उनका बचपन याद दिला दिया। और FM 90.0 रेडियो विदस्ता में आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मैं आगे भविष्य में भी ये चाहूंगी कि आप मुझे फिर से बुलाएं और हम इसी तरह से प्यार भरी बातें करें।
1: जी, और अब वक्त है आप सभी को एक गीत के साथ छोड़े चले जाने का। तो आखिर में बच्चों के लिए आप कौन सा गीत चाहेंगी जो आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहें और बच्चों को डेडिकेट करना चाहें?
2: रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, ये प्यारा सा गीत आप बच्चों को सुना दीजिए।
1: जी, अब मुझे भी दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो चला है अब मेरे भी जाने का और आपको छोड़े चले जा रहे हैं इसी मधुर गीत के साथ। अब मुलाकात होगी अगले अंक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
2: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान थे श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सुपोरी।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में, में, में, में, में।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसको लिखा है सरस्वती कौल बट जी ने, जो पंचकुला में रहती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने वतन से बेघर हुए अब लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 3 दशक से ऊपर। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग और बुजुर्गवार या तो हैं या फिर त्राही त्राही करते सिधार गए। कैसे दुखद त्रासद स्थिति है कि नई पीढ़ी के किशोर युवाओं को ये नहीं मालूम कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मातृभूमि कौन सी है। बाप दादाओं से उन्हें जरूर सुना होगा कि मूलतः वे कश्मीरी पंडित हैं, मगर 1990 में वे बेघर हुए थे। एक चीज तो सत्य है, कश्मीर से हम सबको निकाला गया है, पर हमारे भीतर कश्मीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी संदर्भ में हमारी बहन सरस्वती कौल बट जी ने यह कविता लिखी है। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कब तक। चंद सांसें लेना कठिन है, चंद सांसें लेना कठिन है, इंसानियत भी शर्मसार है। वीरान चमन और शुष्क है भावना, मौन खड़े हैं पर्वत, नदियां शिथिल हैं। देख रहा है चुपचाप विस्तृत आकाश, थम सी गई है वितस्ता। शंकर आचार्य और कलहन की धरा आज रक्त रंजित है। सब और नरबक्षी मंडरा रहे हैं, हर कोना है बहुत ही डरावना। न जाने कब किसकी बारी है, जिंदगी यहां मौत से हारी है। मौत का तांडव जिद पर अड़ा है, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है। चीतड़ों में लिपटी लाशें चीख रही है, किसी की मां किसी का भाई, किसी का बाप पति किसी का, मौत की बेंट चढ़ा है। कश्यप तेरी धरती पर इतना चीतकार, भगवान तुमने ही तो ये सृष्टि बनाई, हे ईश्वर तू कर कोई उपकार, रोक दे ये घातक नरसंहार, रोक दे ये घातक नरसंहार। ये कविता लिखी है बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने, और ये कविता खुद ही उस दर्द को बयां करती है जो हम जागते सोते अपने आसपास ही महसूस करते हैं। ये 33 वर्ष भी अब 33 दिन से ज्यादा नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कल ही हमने अपने घर को छोड़ा है। प्रभु करे किसी का घर ना छूटे। आखिर घर तो घर है। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: मंत्री बनूं हंसती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अम्बाला की संस्था वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था, भारत सरकार की स्वीकृति के बाद, लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था, 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद यह सामुदायिक रेडियो आकाश पर एफएम 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगु के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत हैं। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नू और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें
कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहिए। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम, गीत गुफ्तगू और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त RJ शिवानी, और आज फिर आपसे रूबरू हुई हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है जीवन में कभी हार ना माने। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों तक जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया। चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था, और इसलिए उसे कुएं में दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही बैल को समझ आया कि यह क्या हो रहा है, वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा, और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। वह सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झाँका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्द ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी। जीवन में हर तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा। कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्तों को अपनाता हुआ दिखाई देगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध है। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना, बल्कि साहस के साथ हर चुनौतियों को हरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास, सबसे बड़ी दवा है हंसी, और आश्चर्य की बात है कि यह सब कुछ निशुल्क है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है और मुसीबतों से लड़कर सदैव आगे बढ़ना है। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुनते रहिए 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। जय हिंद, जय भारत।

वो कौन था जो दे गया फरेब, दे गया जख्मों की बारिश, फिर जिंदगी को संभाल न सके। आज मेरे मौसम जर्द हो गए।

दौरानी सफर छूट गए मेरे यार, रास्ते गुम हो गए, इसलिए शायद तुम हमारे ना हो सके। वक्त बेवक्त तुम याद आते रहे, मेरे अपनों की तरह तुम भी मेरी इबादत में शामिल रहे और मैं सजदों में तुम्ही से मुखातिब रहा। यूं ही

0: कमरों में कोई गुजरता है हर पल मेरे पास से, मेरे करीब से। धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई देता है और चलने की आहट सुनाई देती है। इन पैरों को छूने की हल्की जुम्बिश महसूस होती है। कोई तो है जो सुनता है मेरे दर्द को।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी और

हसरतों के मीनार दब गए सीनों में, अब पहले जैसे जज्बात कहां, पहले जैसी मुलाकातें कहां, पहले जैसा चांद भी तो अब कहां उगता है आकाश में। ना पहले जैसी तारों की बारात, उनकी टिमटिमाहट नजर आती है, और ना ही तुम्हारी जानिब से खुशबू मेरे पास से गुजरती है। अब रुक गए काफिले मोहब्बतों के, यूं ही तुम हमारी तन्हाई में याद आते रहे, शायद तुम भुला बैठे।

कोई आएगा, मेरा अतीत दोहराएगा, बीती बात याद दिलाएगा, मुझे खुद से मेरी पहचान कराएगा। मुद्दती हुई कोई ख्वाब में आया नहीं, शायद बरसों से मैं सोया नहीं, इंतजार में बीत गए साल हर साल। ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा हाथ जरूर थामेगा, मुझे ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा अपने पास।

आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्ते।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अम्बाला की संस्था वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था, भारत सरकार की स्वीकृति के बाद, लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था, 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद ये सामुदायिक रेडियो आकाश पर एफएम 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगु के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत हैं। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नू और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर

हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहे। कुछ पंक्तियां सुनाता हूं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम, गीत गुफ्तगू और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: पहलू और गीत का आज का अंक लेकर मैं किरणी फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने के बारे में।
1: बन्ना रे बागा में झूला डाल्या, बन्ना रे बागा में झूला डाल्या।
0: हिंदुओं के लिए सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसे भगवान शंकर का महीना भी कहते हैं। मान्यता है सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। उनको खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। सावन का महीना बारिश का भी होता है और मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा रहता है। गर्मी से राहत के लिए लोग घूमने का आनंद लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं।

0: सावन के महीने में बहुत अधिक बारिश होती है।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: और ये किसानों के लिए भी प्रिय महीना माना जाता है। हर तरफ हरियाली छा जाती है, किसानों को भी फसल के लिए बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बारिश से धरती मानो स्वर्ग सी लगती है और सुंदर दिखाई देती है।

सावन का महीना खुद में एक विशेषता लिए हुए है। ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही मन को भी भिगो देता है। सावन का ये महीना मनुष्य पशु पक्षी सबके लिए खुशहाल मौसम लेकर आता है। आज शाम जब बरसा सावन भीगा अपना तन मन सारा,

सावन के महीने में महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी पड़ते हैं। उनमें से रक्षाबंधन और हरियाली तीज मुख्य त्योहार है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती है। आप सबके लिए तीज के अवसर पर ये प्यारा सा गीत।

तीज का त्योहार हो और मेहंदी ना हो। मेहंदी के बिना तीज का त्योहार या सावन अधूरा है। तीज के दिन मेहंदी लगाने का भी एक विशेष महत्व है। मेहंदी का इस्तेमाल शरीर की गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है हरा रंग, जो मेहंदी का रंग है, कई रोगों के रोकथाम में भी कारगर होता है।

तीज के दिन महिलाएं हरी चूड़ियां हरे रंग का पोशाक पहनकर झूला भी झूलती है, क्योंकि जो हरा रंग है ये प्रकृति का रंग होता है और हरा रंग अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक है। 16 श्रृंगार करके लोग गीत अथवा तीज के गीत गाकर उत्सव भी मनाती हैं, खुशी से झूम उठती हैं और मन मोर नाच उठता है।

सावन महीने में दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो रक्षाबंधन का आता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है।

रक्षाबंधन सबसे सुखद और सार्थक त्योहारों में से एक है। ये भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है।

न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार, चाहत बहन की इतनी कि बस बना रहे प्यार। गम न कोई पास में आए, खुशियां मिले हजार, न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार। इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का समय समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से, प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। इस कार्यक्रम में हम हर मर्तबा बात करेंगे किसी भी एक गोल्डन ईरा मूवी के बारे में और जानेंगे उनके अनकहे किस्से और सुनेंगे उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1970 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जिसने 2020 में अपने 50 साल पूरे किए हैं। वह फिल्म है आन मिलो सजना, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार राजेश खन्ना और आशा पारेख। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल दत्त, फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनाता हूँ इस फिल्म का एक गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, कोई नजराना लेकर आया है।

0: तो हम चलते हैं। इस गाने के आखिरी छंद सूर्यास्त के समय शूट किया जाना था, इसलिए सभी जल्दी में थे और हड़बड़ी में काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों एक दूसरे की पंक्तियां गाने लगे और बाद में इस किस्से को याद कर खूब हंसे। तो अब गाने को याद कर ही लिया है, इसे सुन भी लेते हैं किशोर कुमार की सुरीली आवाज में।
1: अच्छा

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: अरे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक और किस्सा जरूर सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के एक और गीत की शूटिंग धान के खेतों में होनी थी, जिसमें बहुत कांटे थे, जिस वजह से आशा जी को बहुत दर्द सहना पड़ा, जिसने उनके लिए इस गाने को और कठिन बना दिया था। और वहां केवल एक ही वॉशरूम था, इसलिए वह शूटिंग के बाद ही होटल वापस जा सकते थे। इतनी कठिनाई के बाद भी आशा जी ने मुस्कान के साथ इस गाने को शूट किया और हमें मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस ना होने दिया। अब इस गीत के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो आपको सुना भी देता हूँ, जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, रंग रंग के फूल खिले।

किस्सों का सफर जारी है और गीतों का भी। कहा जाता है इस फिल्म के दौरान आशा पारेख जी को चोट लग गई थी, लेकिन आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चोट उन्हें इस फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि किसी और फिल्म के सेट पर लगी थी, और जब वह वहां से शूट कर इस सेट पर पहुंची तो चोट की वजह से उनसे जूता नहीं पहना गया, जिसके बाद ओम प्रकाश ने उनके एक्सरे जांच की व्यवस्था की और फिल्म के एक दृश्य में काका ने उन्हें उठाया। आप देखेंगे कि वह नंगे पैर और उनका पैर सूजा हुआ है। थी ना यह रोचक जानकारी। अभी और किस्से और गीत बाकी हैं, उसके लिए बने रहे हमारे साथ और सुने लता जी की आवाज में यह गीत तेरे कारण मेरे साजन।

0: आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का गीत। हम सब जानते हैं राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वह कितने लोकप्रिय थे। इस फिल्म के एक गाने को छोड़ बाकी सभी गानों की शूटिंग कश्मीर में हुई और उस समय राजेश खन्ना जी को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और खासकर लड़कियों की, जिस वजह से कभी कभी शूटिंग में देरी हो जाती थी या शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। अब कश्मीर में शूट हुआ एक गीत भी आपको सुना देते हैं किशोर की आवाज में, जवानी ओ दीवानी।
1: यहाँ

आप सुन रहे थे 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आज हमने बात की है आन मिलो सजना फिल्म के किस्सों के बारे में और अब चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर और आपको सुनाता हूँ एक आखिरी किस्सा। आन मिलो सजना में 6 सुपरहिट गाने थे जिनमें से ज्यादातर किशोर जी, लता जी और रफी साहब ने गाए, लेकिन इसमें आशा जी के खाते में भी एक गाना आया। यही नहीं, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी, ओम प्रकाश जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनके साथ यह पहली फिल्म थी। आम तौर पर ओम प्रकाश जी ने शंकर जय किशन जी के साथ काम किया है, इसी वजह से शंकर जय किशन जैसा अच्छा बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर थी। और लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी कहते हैं यह उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और आपको छोड़े चले जाऊंगा आशा भोंसले जी के गाए हुए इसी फिल्म के नटखट गीत के साथ, पलट मेरी जान। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से, लिखा आरजे सेजल ने, प्रस्तुतकर्ता व रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अंबाला की संस्था वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था भारत सरकार की स्वीकृति के बाद, लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद यह सामुदायिक रेडियो आकाश पर एफएम 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगू के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत है। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नू और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहे। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम, गीत गुफ्तगू और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना योवा मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सिखैदे गाना बजाना योवा मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना योवा मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना योवा मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच में, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणा के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर 2:00 सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुन।

सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अम्बाला की संस्था वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था, भारत सरकार की स्वीकृति के बाद, लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था, 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद ये सामुदायिक रेडियो आकाश पर एफएम 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगु के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत है। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नु और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें
कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहे। कुछ पंक्तियां सुनाता हूं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम, गीत गुफ्तगु और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

जी सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी आप सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आप सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज के इस पावन दिवस पर। आज रेडियो विदस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है, और रेडियो श्रोता की ओर से होता है। जब श्रोता है तो रेडियो की जो सांसें हैं वो बहुत आगे तक चलती है। तो सबसे पहले बधाई मैं श्रोताओं को देना चाहता हूं, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे अंबाला के समाज सेवी और हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे वेब थिएटर ग्रुप के जो मेंटोर है, और हमारे श्रोतागण भी हमारे साथ इस समय मौजूद है इस लाइव शो में। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे गुरुजी रमेश मराठा जी भी हमसे जुड़ेंगे एक फोन कॉल के माध्यम से जम्मू से, और हम उनका आशीर्वाद भी पाने की कोशिश करेंगे। और सब जो हमारे मेहमान इस समय स्टूडियो में है उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ आज के इस लाइव सेशन में। और आज का दिन है जब वेब थिएटर ग्रुप और FM 90.0 मेगाहर्ट्ज तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। इसके साथ ही मैं ओम बनमाली जी का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, हमारे वेब थिएटर ग्रुप के जो मेंटोर है प्रवीण जी, और साथ में हमारे अंबाला के एक समाज सेवी भी है, हमारे श्रोता भी है विजय जी, इन सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शुरू में करना चाहूंगा डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी से। सर, आपको आज का दिन ये कैसा लग रहा है, और आज रेडियो विदस्ता की जो प्रेजेंस है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और सभी अंबाला वासियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है?
1: पहले तो भारत सपोरी जी आपको और किरणी सपोरी जी को बहुत बहुत बधाई कि विदस्ता रेडियो और वेब थिएटर ने अंबाला में आज स्थापना के 3 वर्ष पूरे किए हैं, और पूरे ही नहीं किए, बहुत सफलता के साथ पूरे किए हैं। जिस उद्देश्य के साथ ये कम्युनिटी रेडियो शुरू हुआ था वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले अंबाले में किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंबाले में भी कोई रेडियो स्टेशन स्थापित होगा, कम्युनिटी रेडियो की स्थापना होगी, किसी ने नहीं सोचा था। तो आपको ये श्रेय जाता है कि आपने ये बीड़ा उठाया, ये पहल की जो कि यहाँ के स्थानीय मूल निवासी नहीं कर पाए, और आपने जो है जम्मू एंड कश्मीर से आकर बस कर यहाँ हर और अंबाला वासियों को एक इतना बड़ा तोहफा दे दिया जो हमेशा आगे जो है वो काम आएगा। और रेडियो विदस्ता जो है 3 वर्षों में इसने बड़ी बुलंदियाँ छुई हैं, और ये बहुत से लोग इसको सुनते हैं और मुझे बताते हैं। जैसे एक मेरा स्टूडेंट खेलन गांव में रहता है यहाँ पंजाब बॉर्डर पर, उसने मुझे एक दिन सुबह फ़ोन किया कि सर आपकी इंटरव्यू आ रही थी, बड़ा अच्छा लगा सुन के। मेरा वाशरमैन है वो बबियाल में रहता है, उसका फोन आ गया जी, आप बोल रहे थे रेडियो में, मैं तो हैरान हो गया, आपने तो बड़े अच्छे गाने सुनाए। तो इस तरीके से दूर दूर से कई बार फोन आते हैं। एक बार मेरे रिलेटिव रहते हैं मैसूर में, मैंने उनको आपका वो भेजा लिंक, हाँ, उन्होंने भी आपके प्रोग्राम सुने, मेरी इंटरव्यू सुनी, तो उन्होंने भी बड़ी प्रेज की। तो आपके प्रोग्राम में भी वैरायटी है, हर तरह का प्रोग्राम है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, मनोरंजन से संबंधित भी है, और आप जैसे डॉक्टर्स की इंटरव्यू करते हैं बड़ी अच्छी, वो इलाज बताते हैं, औषधियां बताते हैं।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक लेता हूं क्योंकि हमारे पास जो कॉल है वो रमेश मराठा जी का आ रहा है जम्मू से। जी मराठा जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: मराठा जी, आप कैसे हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई आज के इस पावन दिवस के लिए। आज हम तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं जिसमें आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहा है।
2: बिल्कुल भारत जी, आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप काम बड़ा खूबसूरत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज हम अक्सर सुनते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है।
0: जी रमेश मराठा जी, हमारे साथ इस समय डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा हैं जो एक समाज सेवी भी है, रोटेरियन है, और साथ में रोटेरियन ओम बनमाली जी भी है, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। और साथ में हमारे साथ हमारे VTG के मेंटोर प्रवीण जी है और विजय शर्मा जी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर हमारे डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी हमारे गुरु जी से कुछ पूछना चाहेंगे तो।
1: रमेश जी, आपकी बहुत तारीफ करते हैं भारत सपोरी जी, और जो अंबाला में ये कम्युनिटी रेडियो स्थापना स्थापित हुआ उसमें आपका भी बहुत ज्यादा रोल है, भूमिका रही है, प्रेरणा आपकी ही रही है और आपके निर्देशन में, गाइडेंस में भारत जी ये रेडियो यहाँ बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं और हर भाषा को जो है वो तरजीह दी जाती है, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और यहाँ तक के अम्बाला के आसपास एक हरियाणवी की लैंग्वेज की एक फॉर्म है, पादी जिसे कहते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे प्रोग्राम जो है इस रेडियो पर प्रसारित होते हैं और हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए और हर प्रकार के लोगों को इसमें मौका मिला है बोलने का, आने का।
0: जी
2: जी जी मल्होत्रा साहब, एक तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अगर इतना सम्मान दिया है, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूं क्योंकि मैं तो शागिर्दी में ही रहना पसंद करता हूं। भारत जी ने इतनी इज्जत बख्शी है, मेरे नाम का वहां पे स्टूडियो भी है, उसमें लिखा है रमेश मराठा, तो ये काम अच्छा करते हैं और हर भाषा में काम करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, और जबकि सोशल मीडिया का जबरदस्त घेराव है पूरी पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी पे, तो इसके बावजूद अगर आज की तारीख में रेडियो कोई सुनता है तो जाहिर है कि अगर कोई सुनता है, बहुत सारे सुनते हैं, तो उसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा भारत सोपुरी जी को, इनकी पूरी टीम को। मैं आज के इस तीसरी वर्षगांठ पर इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा जी, आपने मेरे बारे में मुझे लगता है ज्यादा बोला, ऐसी तो बात नहीं है।
0: अब सर आपसे बात करेंगे ओम बनमाली जी, जो आपके बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं।
2: जी जी जी,
3: मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो समाज के लिए उत्प्रेरक व्यक्तित्व ही नहीं, मार्गदर्शक भी हैं। क्यों कि मुझे जब आपके बारे में बताया गया कि आतंकियों की गिरफ्त में से निकल करके आपने अपनी वो जिजीविषा का प्रदर्शन किया, वो दिखाया, जो अपने आप में बेमिसाल है, और मैं जब इस बारे में अपने संवाद के साथ दूसरों को बताता हूँ तो वो ऐसी शख्सियत के बारे में और ज़्यादा जानने को उत्सुक होते हैं, और मैं उनको बताने के लिए कई बार मेरी चर्चा भी हुई कि कभी आपका इधर आना हो तो हम उनसे रूबरू भी कराएं। खैर वो अलग बात है, लेकिन आप जैसी शख्सियत के मार्गदर्शन में रेडियो वितस्ता का आरंभ होना और उसके मार्गदर्शन में आगे प्रगति पथ पर चलना अपने आप में बहुत बढ़िया एक मिसाल है, जिसके हिसाब से परेशानियों की परवाह ना करके रास्ते तलाशना और उसके हिसाब से आगे बढ़ना, ये आपके पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं और हम इनके साथ जुड़े हुए और आगे बढ़ने को अग्रसर हैं। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद, आगे भी जारी रहे, मेरी ये कामना।
2: जी बिल्कुल, आप इनके साथ बने रहिए, अच्छी बात है, ये तो टीम वर्क होता है ना जी।
3: जी हाँ,
2: टीम वर्क में काम करके मैं लगभग पिछले 32 सालों से ऑल इंडिया रेडियो में काम करता रहा हूँ और यही सितंबर का महीना था, 26 सितंबर को मुझे मेरे घर से कश्मीर में हम रहते थे, आतंकवादियों ने मेरे टेंटू ने उठा के अपने साथ ले गए थे, फिर काफी गोलियां, पूरा टॉर्चर, पूरी रात भर, तेरा वो एक अलग मसला, लेकिन बच गए, शायद इसलिए बच गए क्योंकि रेडियो वितस्ता के इस प्रोग्राम में मुझे बात करनी थी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक स्थिति थी वो, और आज ये वार्ता भी अपने आप में अम्बाला के लिए तो ऐतिहासिक ही है
0: जब हमारे मराठा जी हमारे साथ है।
3: जी हाँ जी हाँ
0: जी, मराठा जी हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी है, प्रवीण शर्मा जी जो हमारे वेब थिएटर ग्रुप के मेंटोर है, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, वो भी आपसे बात करना चाह रहे हैं।
2: जी जी जी,
4: मराठा जी नमस्कार।
2: प्रवीण जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
4: आपने जिस तरह से रेडियो वितस्ता को सपोर्ट किया है, इसके खड़े होने में जो आपका योगदान है वो हम शुरू की टीम के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आज आपके नाम के स्टूडियो के अंदर बैठ के, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं कुछ दिन पहले कठुआ में था और वहां पे जो आकाशवाणी भवन आपकी जो छत्र छाया में चला और आपने उसको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया,
0: तो लोग तो आज भी याद कर रहे हैं।
4: जब वहां से निकला तो मुझे एकदम से वो सारे आपके जितने भी डायलॉग्स हैं जो जो आप सॉन्ग्स के साथ बोलते हैं वो याद आ गए कि किस तरह से आपने एक रेडियो को कामयाब किया और किस तरह से हमें भी यहाँ पे कामयाबी की तरफ पहुंचने के लिए आपने बहुत सारी चीजें हमें दी।
0: जी मराठा जी,
2: प्रवीण जी, एक्चुअली क्या है कि 25 साल तक मैं ऑल इंडिया रेडियो कठुआ में रहा और सबसे बड़ा मेरा जो सरमाया है, हमने पैसा तो नहीं कमाया, तनख्वाह तो मिलती रहती थी, लेकिन लोगों का जो प्यार है ये सबसे बड़ा सरमाया, आज भी लोग मुझे याद करते हैं। और सबसे खास बात इसमें यही रही कि सरहद के उस पार पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज में मुझे लोग सुनते थे, पसंद करते थे मेरी आवाज को, और कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट तक हमें फोन इन प्रोग्राम हमने शुरू किया था, उसमें उनकी बातचीत हम रिकॉर्ड करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। बहरहाल ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इन्होंने, भरत जी ने रेडियो वितस्ता में काम करने का एक छोटा सा मौका दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस यूं ही चलते आ रहे हैं। अगर आगे भी शायद ये अगर इनको मंजूर होगा तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी अगर मुझे मौका मिलेगा काम करने का।
0: सर आपके साथ बात करना चाह रहे हैं हमारे दोस्त है विजय शर्मा जी और ये हमारी श्रोता भी है। ये रेडियो वितस्ता को ये कहते हैं कि इसके बगैर शायद अंबाला की सांसें नहीं चलती। तो विजय शर्मा जी,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
5: रमेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार।
5: जय हिंद जय भारत। मैं रेडियो वितस्ता को लगभग शुरू से ही सुन रहा हूँ और रेडियो वितस्ता के 3 वर्ष के अवसर पर आप सभी को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी जी।
5: सुबह बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है जब रेडियो वितस्ता का प्रोग्राम शुरू होता है, तो भी मैं जिम से बाहर निकलता हूँ और पहले ही गाड़ी में रेडियो वितस्ता शुरू हो रखा होता है।
2: हम सफर जिंदगी का।
5: हाँ जी हाँ जी, पूरा दिन जो है मेरा यही प्रोग्राम चलता रहता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर पे हो। ठीक है। और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके और चैनल के माध्यम से।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और
2: बिल्कुल,
5: बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी शहर में जाता हूं तो उस शहर में जिस गाड़ी में बैठता हूं तो कई बार वो चैनल चल रहा होता है तो फिर उनको बताया जाता है कि अंबाला का चैनल है, तो उस समय गर्व सा महसूस होता है कि हमारे अंबाला का कितना नाम है और भरत जी की मेहनत जो है इतनी वो सफल हो रही है। और थोड़ा सा समय इसका बढ़ाने की इनसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा अगर समय रात को बढ़ जाए तो मेरा 11 बजे के लगभग मैं ऑफिस से आ रहा होता हूं तो चैनल जल्दी
2: बंद हो जाता है।
0: जी
2: सोना भी होता है।
5: थोड़ा सा समय और।
0: जी जी
2: हमने एक प्रोग्राम कठुआ ऑल इंडिया रेडियो में शुरू किया था, सैटरडे को वो ब्रॉडकास्ट होता था, यादें बन गई गीत। फिर लोग कहते थे वो 10 से 11 बजे तक होता था, लोग कहते थे सर इसका टाइम

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: जी अश्वतो, आप सुन रहे थे हमारा लाइव शो। आप सभी को पता है कि हमारी जिंदगी में जो बाधाएं हैं वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, और हमारी एरिया में जो लाइट है वो चली गई थी, लाइट फिर वापस आई है। एक उम्मीद जो है जिंदगी में हमेशा होनी चाहिए, ताकि हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़े। और लाइट आई और हमने काम दोबारा शुरू किया, और आप सभी श्रोताओं के सम्मुख हम हाजिर है एक बार फिर लाइव शो लेके। और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में, क्योंकि आज मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा, आज हम रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। इस उपलक्ष में हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी हैं, श्री ओम बनमाली जी हैं, दोनों रोटेरियन हैं और बहुत ही बढ़िया सामाजिक सेवा करते हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं, और साथ में हमारे साथ प्रवीण जी है। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हमारे गुरु जी रमेश मराठा जी का कॉल आया था, और उसके दौरान हमने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया और हम लाइट का इंतजार करते रहे। लाइट आ गई है और हम फिर हाजिर है। तो डॉक्टर साहब से पहले बात करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं। आप जो बात कर रहे थे, हमारे रेडियो वितस्ता का अंबाला के सभी लोगों के लिए क्या योगदान आने वाले दिनों में होना चाहिए?
1: आप पहले भी बहुत अच्छा योगदान कर रहे हो और आगे भी और अच्छा योगदान होगा। विभिन्न कैटेगरीज, वर्गों, संप्रदाय के लोगों को आप मौका दे रहे हो अपनी बात कहने का। अदरवाइज अंबाले के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंटरव्यू होगी और हम रेडियो पर जाकर के बोलेंगे। ये अवसर जो है वो आपने प्रदान किया है, और जैसा कि अभी आपके एक श्रोता विजय शर्मा जी ने कहा, जैसे आपने भविष्य के बारे में बात की है कि कैसे, तो जैसे उनकी उम्मीद है वैसे कई और भी होंगे श्रोता
0: जी,
1: जो चाहते होंगे कि इस कार्यक्रम के जो आवर्स हैं, घंटे जो हैं, वो बढ़ाए जाएं। तो इस पर आप विचार करना
0: जी।
1: बाकी आप जो हरियाणवी में भी प्रोग्राम दे रहे हो, डोगरी में भी देते हो
0: जी,
1: और हिंदी में भी, पंजाबी में भी, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी शुरू किया जा सकता है कुछ आधे पौने घंटे का प्रोग्राम
0: जी,
1: तो उस पे भी सोचो। और इंग्लिश के जो माहिर हैं लोग अंबाले में, लेखक या पोएट्स, उनको अवसर मिल सकता है। और बाकी भविष्य में ये रेडियो जो है और उन्नति करेगा। बेशक आज आगे सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन फिर भी लोग रेडियो सुनते हैं। जब कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो सुनते हैं, और हमारे घर तो लगा हुआ किचन के पास लॉबी में रेडियो पड़ा हुआ है, और लॉन में हम सुबह ट्रांजिस्टर उठा के ले जाते हैं तो वहां सुनते हैं। तो इस तरीके से सुनने वाले अब भी सुनते हैं रेडियो, और रेडियो कभी भी मरेगा नहीं। चाहे जो टीवी आ जाए, सिनेमा, सब आए, रेडियो का अपना स्थान है और रहेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक आपने सुझाव की बात की, हमारी टीम जो है, हम हर एक सुझाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। विजय शर्मा जी ने जो बात की है उसके बारे में हम सोचेंगे किस तरीके से हम अपने जो प्रसारण के समय है उसको बढ़ाएं। हमने 15 घंटे का प्रसारण जब डिसाइड किया था, हमारी कोशिश थी कि हम 24 घंटे के लिए भी प्रसारण कर सकते हैं, पर हमने 15 घंटे का इसलिए डिसाइड किया ताकि हम सही प्रोग्राम और सही क्वालिटी के प्रोग्राम दें अगर हम 15 घंटे का ही प्रसारण करें। तो हम इस सुझाव पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, और हम हमेशा अपने श्रोताओं की बात को सुनते हैं और उसमें सकारात्मक जो बदलाव है वो जरूर लाते हैं। ओम बनमाली जी से मैं बात करूंगा। आपसे हम जुड़े हैं व्यथ थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी के, जब हम प्लेज करते हैं, क्योंकि मेन जो संस्था हमारी व्यथ थिएटर ग्रुप है वही इस FM 90 को चलाती है। और मैं बनमाली जी से ये जानने की कोशिश करूंगा, आप एक रोटेरियन हैं, आप बहुत समाज सेवा करते हैं, आप हमें भी मान सम्मान देते हैं जब आपके फंक्शंस होते हैं, हमें आप बुलाते हैं वहां पे, हमें रूबरू करते हैं लोगों के साथ, वहां भी लोग रेडियो के बारे में जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इस रेडियो वितस्ता की जर्नी को, जो वेब रेडियो 5 साल चला और आप सामुदायिक रेडियो के आज 3 साल हो गए हैं, आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में आप हमसे और श्रोताओं के लिए क्या उम्मीद करते हैं?
2: धन्यवाद सोपोरी जी। सबसे पहले मैं आज रेडियो वितस्ता की तीसरी स्थापना दिवस के पावन उत्सव पर रेडियो वितस्ता की सारी टीम को, आज आमंत्रित सभी अतिथियों को और रेडियो वितस्ता के श्रोता समूह को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है आज से 3 साल पहले जब रेडियो वितस्ता का शुभारंभ हुआ था
0: जी,
2: तो हम पति पत्नी आपसे पहले से ही जुड़े थे नाटक के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, और ये सब सूचना मिली तो हमारी पहली प्रतिक्रिया थी कि भारत सोपोरी इतना दुस्साहस कर रहे हैं कि एक रेडियो संवाद का कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है
0: जी।
2: लेकिन जिस प्रकार से आपकी लगन विस्थापन के बाद में आपने अपने आप को जिस तरीके से अंबाला की जमीन में रोपा, वो सारी स्थितियां देख करके दुस्साहस के बावजूद मुझे अच्छी तरह याद आया कि चुनौतियों से आंख मिचौनी करना आपका स्वभाव रहा है, और निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफल सिद्ध होंगे। और पिछले 3 सालों में रेडियो वितस्ता का मैं साक्षी रहा हूं, और उससे ये सिद्ध हुआ है कि जो आपने सपना सोचा था, देखा था, उसको साकार किया गया, और हमारी अपेक्षाओं से अधिक बेहतर तरीके से पिछले 3 सालों में रेडियो वितस्ता ने जिस तरीके से लोगों के दिलों में उपस्थिति दर्ज कराई है, वो अपने आप में मिसाल है उन लोगों के लिए जो नए परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। जरा भी उसमें चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। अपने आप में रेडियो वितस्ता का ये 3 साल का सफर, जिसको आप अब कहने लगे हैं कि अम्बाला के निवासियों का हम सफर, वो निश्चित रूप से अम्बाला के निवासियों के लिए और श्रोताओं के लिए ये हम सफर जिंदगी का सिद्ध हुआ है, ये कर दिखाया गया है। इसके साथ साथ आपने पूछा है कि आपको ये 3 साल का सफर कैसा रहा और आगे हम इसमें और बेहतरी क्या कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आप जो कर पाए हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं
0: जी,
2: क्योंकि संतुष्टि का एक छोर ऐसा होता है कि उसके बाद सब समाप्त समझा जाता है कि पा लिया, हो गया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है कि और बेहतर कर सकने की स्थितियां रहती हैं। इसमें भी और बेहतर कर सकने की स्थितियां हैं, लेकिन जो कर पाए, आज शायद ही कोई अम्बाला का कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जो रेडियो वितस्ता से परिचित ना हो। इसके साथ साथ ही गाड़ी में बैठते हुए जब हम ऑन करते हैं, परमानेंटली हमने रेडियो वितस्ता का ही नंबर लगा रखा है, और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर दूर दराज के रहने वाले हमारे मित्र हमारे साथ हैं, तो वो ये देख करके चमत्कृत हो जाते हैं कि ये अम्बाला के गांव में पहुंच गया, और उस बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे कोई गांव है, वहां जाकर जनता से बात कर रहे हैं, और उनकी ऐसी समस्याएं जो ना हरियाणा निपटा पा रहा है ना पंजाब निपटा पा रहा है, उसको आप सामने रूबरू ला रहे हैं। ये रेडियो वितस्ता ही ऐसा सोच सकता है। हमने दूसरे सामुदायिक रेडियो को भी सुना है और उनसे किसी न किसी समय पर मितते रहे हैं। रेडियो वितस्ता ने पिछले दिनों सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए कि बुजुर्गों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो अपने आप में बहुत से लोगों को जब हमने बताया तो उनके लिए ये ज्ञान का प्रसार अपने आप में था, और भलाई के लिए, बेहतरी के लिए प्रसार, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिवर्तन होता है, और परिवर्तन की पहली शर्त है संपर्क। संपर्क का माध्यम कौन? रेडियो वितस्ता। बदलाव, जिसको हम चेंज एजेंट कहते हैं, बदलाव का अभिकर्ता, परिवर्तन का अभिकर्ता, आमतौर पे लेखक लोग, आमतौर पे अभिनेता लोग, आमतौर पे नेता लोग, और प्रसार माध्यम ही परिवर्तन में सहगामी रहते हैं, और ये परिवर्तन ऊर्ध्वमुखी हो, बेहतरी के लिए हो, ये जरूरी है, तो उसका मार्गदर्शन बेहतरी करने के हिसाब से परिवर्तन अगर होता है तो संपर्क, जिसमें आप मनोरंजन भी कर रहे हैं, साथ के साथ ही आप ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं, और उनकी परेशानियों को सरकार के सामने रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं, और संवाद के माध्यम से बेहतरी के रास्ते निकाल रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले आपको एक मुक्तक सुनाया था, उसका आशय भी यही था कि अगर दिलों में दीवारें बन गई हैं तो दरवाजे जो है इस प्रकार के सार्थक संवाद ही खोल सकते हैं, जो आप बखूबी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हम भी कई मंचों पर जब जाते हैं तो वहां पर ये सूचना देते हैं कि अगला प्रोग्राम होगा तो वो रेडियो वितस्ता के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा, और उस हिसाब से हमारे पास भी और ज्यादा लोग आते हैं इस आशय से कि ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, कारगर माध्यम है, और लोगों की परेशानियों को हल करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और दे रहा है। खासतौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के प्रबंधन में सरकार की तरफ से इंतजाम है, वो भी कारगर तभी हो सकते हैं जब जन जन तक उनकी भावनाएं, उनके उद्देश्य और उनके अपेक्षाएं लोगों तक पहुंचे। और उसके लिए कोई तो पुल बनेगा श्रोता में और सरकार में। वो पुल बनने का एक बहुत सार्थक कार्य रेडियो वितस्ता कर रहा है, मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ। लेकिन बेहतरी के लिए, जैसे मेरे से पहले के वक्ताओं ने कहा कि समय बढ़ाया जाए, समय के साथ साथ ऐसे आयाम भी तलाशे जाएं जिसके अंतर्गत बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, स्कूली बच्चे जो हैं वहाँ उनकी गतिविधियां होती हैं वो और बेहतर तरीके से जुड़े, और इसके साथ बुजुर्ग लोग हैं वो पहले तो जुड़े हुए हैं ही, और बेहतर तरीके से आपके साथ रेडियो वितस्ता के साथ जुड़ पाएंगे। तो समय निश्चित रूप से बढ़ाया जाए, उसके साथ संसाधन भी होते हैं, जिसके लिए मैं अंबाला के व्यापारियों से और उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके रेडियो वितस्ता के माध्यम से आप विज्ञापन दें, उसके साथ संसाधन बढ़ेंगे तो हम काम भी के घंटे, प्रसारण के घंटे भी बढ़ा पाएंगे और उसके साथ साथ निश्चित रूप से बेहतर कार्यक्रम दे पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं और पुनः हार्दिक बधाई, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बनमाली जी, आपने जो बात कही बहुत ही सार्थक बात कही, और मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि आपका मार्गदर्शन जो है, जो आपकी सोच है, हम कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों तक भी जाएं जहाँ पर आम व्यक्ति भी पहुँचना चाहे। जैसे आपने बच्चों की बात की, हम एक कार्यक्रम करते हैं बच्चों की बात, तो हम विद्या स्कूल लेकर यहाँ पे वहाँ गए थे, वहाँ के बच्चों के साथ हमने बात की और उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा कि वो देश के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने अचंभे जवाब दिए। जैसे AI का जमाना आया है, उन्होंने आज से 6 महीने पहले AI की बात की कि AI का हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। तो इस विषय पर हम हमेशा काम करते हैं, जो आपने सुझाव दिए उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। जरूर हम कुछ स्कूलों में भी जाएंगे, हम गांव में भी प्लान कर चुके हैं, हम वहां भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे और रेडियो के माध्यम से हम अपने श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे और जोड़ेंगे भी। अब हम चलते हैं कि हमारे जो विजय शर्मा जी हैं इनसे हम बात करेंगे, और हमारे साथ डॉक्टर VK मल्होत्रा जी हैं, शायद उनको कहीं और काम के लिए जाना है, तो मैं चाहूंगा सर आप
1: दो सजेशन मेरे हो।
0: जी जी जी प्लीज सर।
1: एक तो है कि 60s के अंदर विविध भारती ने एक प्रोग्राम शुरू किया हवा महल रात को,
0: जी,
1: इतना पॉपुलर हुआ
0: जी,
1: कि उसके बाद नाटक और ड्रामाज आने लगे रेडियो पर पॉपुलर। तो मेरा आपसे एक सजेशन ये है कि आपका वेद थिएटर भी है
0: जी,
1: तो छोटे छोटे नाटक भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, उसके बारे में भी सोचो। और दूसरा सजेशन है कोई जर्नल नॉलेज और करंट अफेयर्स का कोई प्रोग्राम, चाहे रोज ना भी हो वो, जैसे महीने की समरी हो कि पिछले एक महीने में क्या सारा क्या मुख्य मुख्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, और हरियाणा लेवल में क्या मुख्य घटना घटी, या जो लोगों के लिए काम आने वाली बात क्या घटी, इस तरह का भी कोई प्रोग्राम हो।
0: आपके सुझाव सर हमने नोट कर दिया, हमारी टीम ने नोट कर दिया आपके सुझाव। और जहां तक सवाल है जो आपने बताया कि नाटकों की बात अगर है, तो हमने नाटक तैयार किए हैं, प्रसारित भी किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर वो नहीं सुने हम उनको दोबारा प्रसारित करेंगे। और नाटक बनाना बड़ा आसान होता है, बट उसकी एडिटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम थिएटर से, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो हम उन नाटकों को दोबारा प्रसारित करेंगे। और आने वाले दिनों में दिवाली भी है, उसके ऊपर भी हमने एक नाटक बनाया है, वो दोबारा प्रसारित करेंगे। और जो सुझाव है आपके वो हमने नोट कर दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपकी अपेक्षा
1: नाटक में कोई भूमिका करनी हो तो वो भी हम कर देंगे।
0: जरूर जरूर, ये अंबाला केश लोगों का ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं हर रोज क्लोज करने पर ये कहता हूं, अगर आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से अंबाला के लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आप अपने बारे में हमें लिखें, हम आपको आमंत्रण देंगे ताकि हम आपसे यहां पर आपकी बात को रिकॉर्ड कर लोगों तक पहुंचाएंगे। और डॉक्टर साहब को जाना है, और हम आपको सर इजाजत देते हैं, आप हमारे श्रोताओं को भी जाते जाते कुछ गुनगुनाते हुए बाई कीजिए, ताकि हम आपको इजाजत दें। और हम, हमारे साथ विजय शर्मा जी है, उनसे भी हमने बात करनी है, तो हम चाहेंगे कि गुनगुनाते हुए आप उनसे कुछ बात करें। तो जब
1: जी बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, रेडियो वितस्ता। बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, रंग ये लाता, खुश ये करता, मनोरंजन करता, मैं सुनू इसको रोज रोज रे, काहे तुम भी नहीं सुनते रोज रोज रे। बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, पूरा गाना आपको भी भेजेंगे
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आप हमें हमेशा सहायता देते हैं वे थिएटर ग्रुप को, और आने वाले दिनों में हम एक नाटक तैयार करने जा रहे हैं और हम उस दिन आपको फिर आमंत्रित करेंगे, तो आपका आशीर्वाद हमें वहां भी चाहिए होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमारे
1: साथ, बड़ा अच्छा लगा आकर, आपका रेडियो ऐसे फलता फूलता रहे।
0: धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी हाँ श्रोताओं, अभी हमारा लाइव शो जो है वो जारी है, और अब हम बात करते हैं हमारी दोस्त विजय शर्मा जी के साथ। और विजय शर्मा जी भी समाज सेवी है, समाज के लिए काम करते हैं, और उसके लिए साथ में वो जो हमारे यहाँ पर एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है वहाँ पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, हर जगह पर ये पार्क में जब होते हैं वहाँ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो साथ में हम उनसे ही जानेंगे, उनसे ही जानेंगे कि वो आप सभी अंबाला की श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं। विजय शर्मा जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, तो आप अपने बारे में और बताइए ताकि हमारे श्रोता आपको और अच्छे से जाने।
3: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मैं विजय शर्मा अंबाला का रहने वाला हूं। रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन और सभी का स्वागत है। रेडियो एक माध्यम ऐसा है जो कि सस्ता माध्यम है सब तक पहुंचने का, लेकिन इसके पीछे होने वाली करने वाली जो मेहनत है वो हमसे छुपी रहती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है रेडियो के प्रोग्राम के लिए। बचपन से ही हम सभी रेडियो के प्रोग्रामों से वाकिफ रहे, और रेडियो के प्रोग्राम देने वाले अमीन सियानी जी, देवकी नंदन पांडे जी, ये कुछ एक ऐसे नाम हैं जो कि सुपरस्टार हैं रेडियो के, तो किसी भी दूसरे वाले प्लेटफार्म के बराबर का प्लेटफार्म है रेडियो वितस्ता भी। और जैसे जैसे समय बदला, एफएम चैनल शुरू हुए, तो हमारे अंबाला में पहला चैनल रेडियो वितस्ता शुरू हुआ। सुबह बड़ी बेचैनी से इंतज़ार रहता है समय का कि रेडियो वितस्ता का चैनल शुरू हो और उसका साथ शुरू हो जाए, तो पहले चैनल से, पहले क्षण से रेडियो का चैनल शुरू होता है और वहीं से दिन का सफ़र शुरू होता है। जैसे जैसे दिन का सफ़र आगे बढ़ता है, वही चैनल साथ साथ हमारे चलता रहता है, और पूरा दिन लगभग हर समय वो चैनल और हमारे साथ साथ चलता रहेगा, और पूरा सफ़र हमारा दिन का इसी तरह से गुजर जाता है। और मेन बात है कि इस चैनल के अंदर हमें हर तरह की सामग्री, ज्ञानवर्धक सामग्री, समाज को जोड़ने वाली बातें, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें, पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें, और खबरों की, मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा जीवन का छूटता नहीं है जिसकी आवश्यकता हो और हम उससे वंचित रह जाएं। तो मेरी तो भरत जी से पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे को इतना बढ़िया चैनल देने के लिए, और थोड़ा सा इसका समय बढ़ाने की प्रार्थना करता हूँ कि रात्रि को थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है, लगभग आधा घंटा इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे रात को नींद आने तक हमारे को इसका साथ मिल सके। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों को रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।
0: जी हाँ विजय शर्मा जी, आपने जो सुझाव दिया है वो सुझाव हमने नोट किया है, और अगर हर साइड से ये सुझाव आ रहा है तो हमें समय तो बढ़ाना ही होगा। हम आपको ज़रूर ये कहेंगे कि हम कुछ ऐसा कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, जैसे डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी ने भी कहा और बनमाली जी भी कह रहे हैं, तो कुछ वितस्ता महल की तरीके से कोई प्रोग्राम की तैयारी करेंगे हम, और हम आपको आश्वासन देते हैं आने वाले दिनों में जब हम एक कार्यक्रम की सीरीज तैयार करेंगे तो हम जरूर इसका जो प्रसारण है वो 9 से 9:30 बजे की ओर करने की कोशिश करेंगे। और सभी श्रोताओं को भी कहूंगा कि जो नंबर हम आपको रोज नोट कराते हैं आप भी अपना फीडबैक उस पर हमें भेजें, और बहुत सारे लोग हमें फीडबैक भेजते भी हैं, जैसे शर्मा जी हमारे सोशल मीडिया पर हमेशा हमारे साथ प्रेरणा स्वरूप जो है वो रहते हैं। शर्मा जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप जितना हम शर्मा जी को जानते हैं, शर्मा जी और क्या क्या कार्य करते हैं जरा कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं जिससे वो भी उनको प्रेरणा मिले।
3: सर सबसे मेन काम जो है मैं ब्लड डोनेशन का करता हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत बढ़िया।
3: कई वर्ष पहले की बात है, लगभग 7-8 साल पहले की
0: जी,
3: एक हमारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया
0: जी,
3: और रात को 11:30 बजे हमारे को 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ गई। लगभग 2 से 2.5 घंटे तक हम घूमते रहे
0: पर
3: हमें 1 यूनिट ब्लड नहीं मिला
0: जी,
3: नेगेटिव यूनिट था, नहीं मिल पाया। उसी दिन से मैंने सोचा कि यार ये समस्या क्या है, फिर मैंने कहा एक टीम बनाई जाए। एक 6 मित्रों ने, पहले 3 मित्र जुड़े फिर 6 जुड़े, हमने एक टीम बनाई
0: जी।
3: उसमें हमने अपने दोस्तों को कहा कि यार हम हर 3 महीने के बाद ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, अपने घर में कोई फंक्शन हो तो उस फंक्शन को हम इस तरह के भी मना सकते हैं, जन्मदिन हो
0: जी,
3: ठीक है, वर्षगांठ हो, शादी की वर्षगांठ हो, उसमें ब्लड डोनेशन का कैंप लगा सकते हैं
0: जी।
3: जितने भी लोग आ सकते हैं, तो हम लिस्ट बनानी शुरू कर दी। तो इस समय हमारे पास लगभग 300 से 350 डोनर है, और अम्बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में 235 का रिकॉर्ड है हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का।
0: क्या बात है, क्या
3: और वो नंबर 1 पर है
0: जी,
3: ठीक है। तो नेगेटिव वालों की अलग है, मेरे घर में मेरा बेटा, मेरी मिसिस, मेरी बिटिया, मैं सारे ब्लड डोनेशन करते हैं।
0: वाह।
3: और जब भी कैंप लगता है मेरी सिस्टर, सिस्टर्स के बच्चे, जैसे एक उत्सव होता है ना, उस उत्सव के रूप में आते हैं। क्योंकि मैंने पहले ये देखा कि जब हम कहीं जाते हैं, ब्लड की जरूरत पड़ी किसी को
0: जी,
3: उसका फोन आया, हम वहां पहुंच गए, हम उनसे पहले पूछते हैं कि भाई साहब आपने अपना ब्लड चेक कराया क्या, बोलते हैं नहीं,
0: नहीं।
3: मैंने कहा सर ये ब्लड ही तो है जो हम एक से दूसरे को दे सकते हैं, हम कोई आपसे पैसे नहीं लेते ब्लड देने के, ठीक है ना। तो जब तक आप नहीं देंगे, तो मेरा जब भी कैंप होता है उसमें पहला यही होता है कि जो फर्स्ट डोनर है ना वो इंट्रोड्यूस हो, और 90% फर्स्ट डोनर ही इंट्रोड्यूस होते हैं
0: जी,
3: और उनको जोड़ते हैं। अब नेगेटिव वालों की हमारी लिस्ट काफी लंबी है, ए नेगेटिव नहीं मिलता वो मिलेगा, बी नेगेटिव नहीं मिलता वो मिलेगा, और उनको मैं कहता हूं कि आप जिनको दे रहे हो ना उनको अपनी डायरी में नोट करिए, कल को आपको जरूरत पड़ेगी नेगेटिव की
0: तो कभी भी
3: आप उन 6 व्यक्तियों को फोन कर सकते हैं
0: जी।
3: तो एक लंबी चेन है, तो ब्लड डोनेशन हर 3 महीने के बाद करिए, एक तो आप स्वस्थ रहेंगे ब्लड डोनेशन करने के बाद। हमारे को बहुत सारी बीमारियां हैं जो उससे छुटकारा दे देती हैं, आपको हार्ट की दिक्कत नहीं आएगी, आपको बीपी की दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी अगर आप रूटीन में ब्लड डोन कर रहे हो।
0: शर्मा जी मैं बनमाली जी से बात करने से पहले आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। एक मिथ्या है कि अगर हम खून देंगे तो हम कमजोर हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप जरा बताइए, उसके बाद हम अपनी जो तरफ से आपको सहयोग कर सकते हैं वो बताऊंगा जी।
3: शर्मा जी मैं आपको अपना साझा कर रहा हूँ विचार, मैंने जीवन में आज तक कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया
0: जी,
3: लेकिन ब्लड डोनेशन करने के लिए उससे 3 गुनी मोटी सुई होती है
0: जी, वो वेंस में जाती
3: है। जब वो जाती है ना तो मतलब कभी महसूस ही नहीं हुआ उसके दर्द का
0: जी,
3: और मतलब एक ऐसा प्राउड फील होता है, वो 3-3.5 मिनट का जो वक्फा होता है उसमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हमारे से बड़ा हीरो कोई नहीं है,
0: कोई भी नहीं है,
3: ठीक है ना
0: जी।
3: और ब्लड डोनेशन करने के बाद किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आती
0: जी,
3: किसी भी तरह की
0: जी,
3: ठीक है। बस ब्लड डोनेशन करने के बाद आपको
0: कुछ खाना होगा,
3: 5 मिनट तक लेटे रहना है,
0: रेस्ट करना है जी,
3: क्योंकि जब ब्लड जाता है निकलता है तो आपके ब्रेन में से कम हो जाता है
0: जी।
3: हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत पहलवान लोग जो कि जिम वाले हैं वो अपने आप को समझते मैंने ब्लड दे दिया, एकदम से खड़े हुए क्लैप्स हो गए,
0: चक्कर आ जाता है।
3: उनको समझाते भाई लेटे रहो
0: जी,
3: सिर्फ
0: जी,
3: बाकी कुछ नहीं है, इतना बढ़िया महसूस होता है और ऊर्जा डबल हो जाती है आपकी
0: जी
3: ब्लड देने के बाद। जैसे हमने कोई बूस्टअप ले लिया ना, उस तंका रहेगा
0: जी,
3: और बहुत बढ़िया होता है, फील होता है, सब ब्लड दें।
0: चलिए, मैं श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा, रक्तदान जो है वो महादान होता है। और आज विजय शर्मा जी, जिनको हम जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे श्रोता भी है, और आज इनका एक नया पहलू हमारे सामने, आप सभी श्रोताओं के सामने आया कि ये रक्तदाता है, और रक्त जो कैंप है वो लगाते हैं ताकि हम जो जाने हैं उनको बचा सकें। शर्मा जी, मैं आपको ये कहता हूं कि जब आपका अगला रक्तदान शिविर होगा तो आप जरूर रेडियो वितस्ता को बताइए, हम 3 दिन पहले यहाँ अनाउंस करते रहेंगे कि आप इस जगह पर अपना रक्त देने के लिए पहुंचिए, और हम आपके इस मुहिम में हम अपना जो सहयोग दे सकते हैं वो हम देंगे, क्योंकि फिर कहूंगा रक्तदान महादान होता है। और सभी मैं अंबाला वासियों को कहना चाहूंगा, अगर कभी भी ऐसी जरूरत हो आप रेडियो वितस्ता को कॉल कर दीजिए, हम आपको जोड़ेंगे विजय शर्मा जी के साथ। अगर आपके पास विजय शर्मा जी का कॉन्टैक्ट नहीं है, पर रेडियो वितस्ता भी विजय शर्मा जी का ही एक अंग है, एक हिस्सा है, यहां से हम आपको विजय शर्मा जी के साथ कनेक्ट कराएंगे ताकि जो जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सभी स्वस्थ रहें, बट जब जरूरत हो तो हमें कुछ सोचना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। आखिर में बनमाली जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इतने समय से रोटरी के साथ जुड़े हैं, आप अंशुल बनमाली ट्रस्ट भी चलाते हैं, आप बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं। बनमाली जी इंडिविजुअल, एक निजी तौर पर जब वो आराम कर रहे होते हैं, तब वो क्या सोच रहे होते हैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उस समय उनकी विचारधारा क्या होती है?
2: सुपोरी जी, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो अपने आप में व्यक्ति की सोच, उसके दृष्टिकोण और उसकी वैचारिक मान्यता को प्रकट करने के लिए आमतौर पर पूछा जाता है। मैं अपने आप को समाज की एक अकिंचन इकाई के रूप में देखता हूं
0: जी,
2: जो व्यक्तिगत बेहतरी के साथ साथ सामाजिक बेहतरी की जाए, जिसके लिए लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, और ये जुड़ाव सबसे पहले अपने परिवार में अपनी अर्धांगिनी के साथ ही जुड़ने के एक कड़ी के रूप में आरंभिक अवस्था में होता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी अर्धांगिनी भी इसी प्रकार की विचारधारा रखती है, और जैसे मुझे कलात्मक रुचि, साहित्यिक रुचि है, उसको भी इस प्रकार की रुचियां रही, और ये रुचि ही माध्यम बना मेरा उनसे जुड़ने का और आगे बढ़ने का। तो मेरे इस प्रकार के सृजनात्मक कार्यों में उसका तहे दिल से सहयोग आज तक रहा है, और हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे हैं। आपको याद होगा कि पहली बार जब मैं यहाँ आया था, मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ थी, और उन्होंने भी जो कुछ कहा उसी को ही मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। इसके बाद जब मैं अकेला हूँ, सोच रहा हूँ अपने बारे में, अपनी पारिवारिक इकाई के बारे में, उसके साथ साथ बाहर के वातावरण के बारे में, और जिन लोगों से मैं जुड़ता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जिन स्थितियों के साथ एकाकार करता हूँ, वो भी अपने आप में मेरी इकाई को और अधिक व्यापक बनाता है, और समाज को अपने अंदर, उसकी स्थितियों को अपने अंदर आत्मसात करके और बेहतर किए जाने की कोशिश करता है, जिसके लिए मेरे आजकल के और पिछले कुछ वर्षों के कार्य जो हैं उसके बारे में संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा।
0: जी जी,
2: मैं बैंक से मुख्य प्रबंधक के रूप में आज से करीब 15 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ। बैंकिंग को मैंने जी जान से जिया, जो बेहतर कर सकता था किया। उसके बाद मेरी सेवाएं ली गई कि आप बैंकिंग के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से उस नई पीढ़ी को तैयार करने में अपना मार्गदर्शन दें जो बैंकों में प्रवेश पाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में तो सेवा कर चुका, अब ऐसी ज़रूरत होगी तो बुलाया जाएगा तो मैं हाजिर मिलूँगा। तो ऐसे बहुत से बच्चे जो ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, बैंकों में जाने के लिए इच्छा रखते थे, सपने थे उनके, तो कुछ संस्थाओं ने मेरी सेवा इस रूप में ली कि मैं उनका, उन बच्चों का जिन्होंने लिखित परीक्षा बैंकिंग प्रवेश के लिए पास कर ली है और उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाने वाला है, तो उनके मॉक इंटरव्यू के लिए मेरी सेवाएं ली गई। मैंने पिछले कुछ सालों से ऐसे बच्चों के मॉक इंटरव्यू लिए और सौभाग्य से उनको मैंने साथ के साथ मार्गदर्शन किया कि आप में क्या कमियां हैं, कैसे इनको दूर किया जाना है और अभ्यास से वो और बेहतरी की तरफ बढ़े। और पिछले इन सालों में लगभग 40 ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट बच्चे, लड़के लड़कियां हुए जो बैंकों में आज
0: जिनका चयन हुआ,
2: चयन हुआ और उसमें लगे हुए हैं। उसमें एक स्थिति देखिए, मैंने एक चेक काटा और मेरे पास बैंक से फोन आया कि ये चेक रचना बनमाली के नाम से है
0: जी।
2: और आपका उनके साथ क्या संपर्क है? मैंने कहा वो मेरी धर्मपत्नी है
0: जी।
2: तो क्या आप ओम बनमाली बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, मैं इस बैंक की शाखा का प्रबंधक हूँ, ब्रांच मैनेजर हूँ और मेरा मॉक इंटरव्यू आप ही ने लिया था और आज मैं इस स्थिति में यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ भी आई कुछ बैंकों में। मैं दूसरे शहरों में गया तो वहाँ पे भी ये स्थिति रही। तो ये एक पक्ष रहा। दूसरा, हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई जो बहुत ही, जिसने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। हमारे एकमात्र संतान, हमारा सुपुत्र विवाह के करीब 1.5 साल बाद ही इस दुनिया से चला गया। तो हमने उसकी याद में एक ट्रस्ट बनाई अंशुल बनवाली मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से। उस ट्रस्ट के अंतर्गत पिछले लगभग 3-4 सालों से हम कोशिश करते हैं कि समाज के वंचित वर्ग से हम जुड़ें और उनकी बेहतरी के लिए कार्य करें। तो रोटरी में होने के नाते समाज सेवा से कई सालों से जुड़े हैं, अब उसके साथ एक और आयाम जुड़ गया अपने बच्चे के नाम से। तो उसमें हम देखते हैं उन बच्चों की तरफ जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो दूसरे शहरों में जा करके स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इवन झुग्गी झोंपड़ियों में भी अब सपने देख रहे हैं आगे बढ़ने के, उन सभी बच्चों में हम अपने बेटे का रूप देखते हैं और उस हिसाब से उनकी बेहतरी के लिए जो बेहतर कर सकते हैं, चाहे स्कूलों में जाके जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं या यहाँ पे जो टांगरी बांध है उसमें जो स्लम एरिया है वहाँ पे जाकर के उनकी बेहतरी के लिए, किसी को शिक्षा के लिए ज़रूरत है, किसी को और किसी के रूप में ज़रूरत है, जैसे बाढ़ आ गई तो उनको सहायता की ज़रूरत है, तो अपनी ही पेंशन में से कुछ सहायता अगर हम कर पाते हैं तो वो करने की भी कोशिश करते हैं। तीसरा हमारा है लेखन कार्य से, साहित्य से जुड़े होने का कार्य, वो हम गोष्ठियाँ, वर्कशॉप, इस प्रकार के संगोष्ठी परिचर्चाएँ करते रहते हैं। अम्बाला के कलात्मक जगत जो है उसमें साहित्यकार, कलाकर्मी, ड्रामा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, किसी भी भाषा के लोग हैं, सबके साथ हम जुड़ाव रखते हैं और कम से कम महीने में 2 या 3 कार्यक्रम करते ही हैं जिसमें ये गतिविधि भी हमारी जारी रहती है। तो इस माध्यम से अकेले होते हुए भी हम समाज से जुड़े हुए, समाज की इकाई का भी हिस्सा हैं और बृहत्तर समाज को आगे बढ़ने में भी उसके साथ जुड़े हैं।
0: बनवाली जी, आपको अम्बाला में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको नहीं जानता हो, आपके काम को नहीं जानता हो। हम बहुत ही करीब से आपको जानते हैं और आपके कार्यों को हमें भी आप अपना हिस्सा बनाते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु ने जो हमें काम दिया है वो हम करते रहते हैं और प्रभु का जो आदेश होता है उसको भी हम टाल नहीं सकते। पर सबसे बड़ी बात ये है, आप हमारे प्रेरणा स्रोत इसलिए भी हैं कि बहुत मुश्किलों, कठिन समस्याओं के बाद भी, कठिन समय के बाद भी आप रुके नहीं। आप आज भी, जैसे अपने अंशुल जी को आप रास्ता दिखाते थे, उनको बड़ा किया, आज आप पूरे समाज को बड़ा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा काम और कोई भी नहीं हो सकता है। इसके लिए तो हम आपको अपनी ओर से, परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से और हमारी श्रोताओं की ओर से भी आपको साधुवाद देते हैं। आपसे मैं अंत में हमारे श्रोताओं के लिए संदेश चाहूंगा, पर उससे पहले मैं हमारे वेब थिएटर ग्रुप के मेंटोर प्रवीण शर्मा जी के साथ बात करूंगा। प्रवीण जी, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है और बहुत समय के बाद आपका समय और नंबर आया है, क्योंकि जो अपने परिवार के सदस्य होते हैं उनसे हम आखिर में बात करते हैं, चाहे वो नाराजगी की हो चाहे वो खुशी की हो। तो हम आज खुशी की बात करते हैं। आप व्यथ थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हैं, आप हमारे फाउंडर मेंबर है व्यथ थिएटर ग्रुप के, वीटीजी के। तो जो सफर है, आपने किस तरीके से ये देखा और किस तरीके से हम अंबाला के लोगों के साथ जुड़ पाए और अब एक आवाज के माध्यम से हम अंबाला के लोगों के साथ जुड़ पाए, इसका आप अपना एक विश्लेषण बताइए। अगर इसमें कुछ कमी है उसको हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे, और अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत किया है तो उसके बारे में आप बताइए। जी प्रवीण जी,
2: लगभग देखते देखते एक दशक से ज्यादा हो गया जब हमने, मैं और दास जी बैठे और एक चर्चा चली कि मेरा, दास जी ने बोला कि मुझे एक मन में इच्छा है कि मैं एक थिएटर ग्रुप बनाऊं, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? तो मैंने कहा सर इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। थिएटर एक अंबाला में उस टाइम चालू करना और बिना रिसोर्सेज के, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे उस टाइम, लेकिन हमने सब संस्थाओं से सहायता ली, मदद ली और आगे बढ़ते हुए हम कुछ करना चाहते थे जो दूसरों से अलग हो। कुछ थिएटर ग्रुप वहां पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन हम अलग क्या करें, हम उस चीज के बारे में सोच रहे थे। तो हमने सबसे पहले निर्णय लिया कि हम सभी कलाकार जो हैं वो नए लेंगे
0: जी।
2: हमने नए कलाकार लिए, उनको ट्रेन किया, उनको सिखाया। लगभग 40-45 दिन की मेहनत के बाद हमने अपना पहला शो लेके लोगों के सामने गए।
0: 8 अगस्त 2013 को
2: हम गए, तो लोगों ने हमें भरपूर सराहना की, हमारे काम को सराहा, और बस वहां से वो सफर शुरू हुआ। तो लगभग आने वाले सालों में हमने करीबन 130-140 नए कलाकार अंबाला को दिए, जहां मुझे कहते हुए आज फक्र हो रहा है कि हमारे ही दिए हुए कलाकारों ने आगे भी रंगमंच बनाए
0: जी।
2: आज वो नए रंगमंच पे और कलाकारों का मौका दे रहे हैं, मतलब जो एक पेड़ हमने लगाया था उसकी शाखाएं जो हैं वो फैलने शुरू हो गई और अंबाला को एक कलाकार हब के रूप में भी जाना जाने लगा, यहाँ से कलाकार निकलने लगे।
0: आपकी बात को रोकता हूँ मैं, हमारे पास जितने कलाकार जुड़े उसमें से एक कलाकार, एक नहीं कुछ कलाकार जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। इन दिनों नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चल रही है सफेद सागर, जो करगिल युद्ध के ऊपर बनाई गई है, उसमें हमारे थिएटर ग्रुप का ऋषभ भारद्वाज जो मलिक के किरदार में उस सफेद सागर में है जो मुंबई में शूट हुआ, तो हमें गर्व होता है जब हमें वो कॉल करते हैं कि वीटीजी का एक सितारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर नेटफ्लिक्स के एक सीरीज में इस समय काम कर रहा है। प्लीज सर।
2: और उसके साथ साथ ही मैं जो दास जी ने बात छोड़ दी, मैं वो उसको पूरा करूँ कि दास जी ने इस बीच में 3-4 पिक्चर्स में और कई स्टेज प्रोग्राम, कई ड्रामास, कई सीरियल्स नेशनल लेवल पे भी काम किया। जब हमारी ये सोच पक्की हुई, जो हमारा पहले दिन से टारगेट था कि हमने इसको एक रेडियो की तरफ लेके जाना है, तो वो हमने पूरा करते हुए पहले एक वेब रेडियो बनाया। और मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ
0: इंफॉर्मेशन
2: एंड ब्रॉडकास्ट, भारत सरकार का, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम अंबाला में एक FM रेडियो जो है वो स्थापित कर सकते हैं
0: जी।
2: कड़ी मेहनत के बाद, 2-3 साल के प्रयास के बाद हमने एक स्टूडियो तैयार किया और यहाँ पे एक FM रेडियो का प्रसारण शुरू किया। स्थानीय लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, नई नई आवाज़ें, नए नए कलाकार, नए नए प्रोग्राम, सब यहाँ पे चलता रहा। और अभी 3 साल हो गए हैं हमें ये FM का प्रसारण करते हुए। यहाँ थोड़ा सा एक मैं लोगों से सहयोग मांगना चाहूँगा कि जो एक फाइनेंशियल फैक्टर होता है उसके अंदर अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। मैं अंबाला के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने विज्ञापन, अपनी दुकान, अपने संस्थान और अपनी चीज़ों का जो विज्ञापन है वो इस रेडियो पर देना शुरू करें, ताकि लोग इसको सुने, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी श्रोताओं की संख्या है जो गाड़ियों में चलते हुए, रेस्टोरेंट्स में या कई जगह पे
4: रेडियो का प्रसारण होता है, तो आपके जो उत्पाद हैं, जो आपकी व्यावसायिक संस्थान है, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बड़े आसान तरीके से हो सकती है। और बहुत ज़्यादा रेट्स नहीं है हमारे, बड़े नॉमिनल रेट्स पे हम करते हैं और उसमें भी ऑफर्स देते रहते हैं। तो पिछला सफ़र बहुत अच्छा चला रहा, आगे भी हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से और प्रोग्राम बनाएं को जो आप लोगों से जुड़े हुए हों और आप लोगों के जीवन में वो एक सार्थक बदलाव लेके आए। कुछ ना कुछ जो भी हमारे पास फीडबैक आती है या हम लोग सोचते हैं एक नया, उसके ऊपर पूरा मंथन करने के बाद फिर हम उसके लिए आपके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। कुछ ड्रामास हमारे पास तैयार पड़े हैं, वो हम तैयार करेंगे और जिस तरह से आपको रेडियो में वो समझ आ सके, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि विजुअल और ऑडियो में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑडियो में भी हम उस तरह से आपको दे पाएं जिस तरह से आप उसको इंजॉय करवाएं। रेडियो विस्ता की तरफ से एक बार फिर से मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से हम आज यहां तक पहुंचे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने विस्तार में ये जानकारी दी वे थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की। जो वे थिएटर ग्रुप पिछले 13 वर्षों से अम्बाला में कार्य कर रही है, 16 से ज्यादा नाटक हमने तैयार कर हमने उनका मंचन किया अलग अलग जगहों पर, अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में, हिमाचल में और दिल्ली में भी, और उसी का ही एक हिस्सा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। कोशिश है कि हम लोगों के दिलों तक पहुंच पाए, हम उसमें कितना कामयाब हुए हैं। मैं विजय शर्मा जी से कहूंगा कि आखिर में हमें एक जो संदेश है सभी श्रोताओं को कि वो किस तरीके से रेडियो वितस्ता के साथ जुड़े, तो वो हमें बताएं और उसके बाद हम अपनी टीम के साथ भी हम बात करेंगे और अपनी टीम के साथ भी बात करेंगे, देखते हैं उनका भी क्या रवैया होगा, उनका क्या सोचना होगा किस तरीके से। तो सबसे पहले विजय जी, संदेश।
3: रेडियो वितस्ता एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है सभी श्रोताओं के लिए कि आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नंबर दिए जाते हैं, उन नंबर पर अपने विचार रख सकते हैं पर्सनली, ठीक है ना।
0: अगर विजय जी के पास भी कोई फीडबैक आता तो विजय जी भी हमारे तक पहुंचा सकते
3: हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: जी जी,
3: सबका खुद का अपना खुद का चैनल है
0: जी जी,
3: रेडियो वितस्ता हम सबका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। बनमाली जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, फिर हम अपनी टीम के साथ भी बात करेंगे, देखते हैं कि उनकी अपेक्षा और वो श्रोताओं के लिए क्या करना चाहते हैं।
2: किसी भी देश के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी है उस देश की मानवीय संपदा
0: जी,
2: ह्यूमन कैपिटल
0: जी।
2: मानवीय संपदा मानव इकाइयों से ही मिलकर के बनती है और वो मानव इकाइयां किस सीमा तक अपने आप को बेहतर बना पाई हैं, अपने आप को अधिक योग्य बना पाई हैं, वो इस पर निर्भर करता है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए कोई माध्यम उनके पास है कि नहीं है। आज के समय में प्रसार माध्यम अपने आप में बहुत बड़ा पुल का काम करता है मानवीय इकाइयों को आपस में जोड़ने का, उनको प्रशिक्षित करने का और उनको बेहतर बनाने का। तो आप व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से बेहतरी अपनी चाहते हैं, समाज की चाहते हैं, तो बेहतर है कि रेडियो वितस्ता से आप जुड़ें। उससे न केवल आपका मनोरंजन होगा, आपकी जो ज्ञानवर्धन है वो अपने आप को बेहतर मानवीय इकाई बनाएगा, आप अपनी दृष्टि में, अपने परिवार की दृष्टि में, अपने समाज की दृष्टि में और बेहतर लगने लगेंगे। और यही प्रक्रिया देश को, समाज को बेहतर करने का ही एक अंग है। इसलिए आप रेडियो वितस्ता से जुड़ें, अपने आप को बेहतर बनाएं और बेहतर समाज के निर्माण के लिए आपका ये योगदान बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ से पुनः सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बनमाली जी। हमारे साथ इस समय टीम रेडियो वितस्ता से कुछ समय पहले रेडियो वितस्ता से जुड़ी अनु है और हमारी रेडियो संचालिका कृष्णा भी हमारे साथ है और मैं इन दोनों से ज़रूर सुनना चाहूंगा और हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि आप जब श्रोताओं के लिए यहाँ पर प्रसारण को तैयार करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं कृष्णा जी से सुनूंगा। सबसे पहले मैं कृष्णा जी से सुनूंगा कि वो जब प्रसारण तैयार करती हैं तो उनके मन में क्या सोच होती है, किस तरीके से हम श्रोताओं तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं।
5: सबसे पहले सभी श्रोताओं का दिल तहे दिल से शुक्रिया कि उनके सहयोग और प्यार से आज हमारा रेडियो विधस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ बना रहा है। हम जब भी कोई प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि हमारे जो श्रोता है वो किस तरह के प्रोग्राम चाहते हैं, मीन्स कि ऐसे हम कौन सी बात उन तक पहुंचाएं जिससे काफी सभी श्रोताओं में से एटलीस्ट एक या दो, अगर उन तक भी हमारी बात पहुंचती है, कोई हमारी बात से समर्थन करता है, तो हमारा मिशन सफल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि अब आगे भी श्रोताओं के लिए हर तरह के प्रोग्राम, जिससे सामाजिक जागरूकता बने, ऐसे प्रोग्राम और भी हम और भी प्रस्तुत करके उनका मनोरंजन करते रहे। सर,
0: अनु से बात करेंगे। अनु पोस्ट ग्रेजुएट है, अनु पोस्ट ग्रेजुएट है मास कम्युनिकेशन में, और उन्होंने बहुत कुछ किताबों में तो पढ़ा है, पर जब हम प्रैक्टिकल तौर पर काम करते हैं, बात करते हैं, तो कुछ और होता है। तो अनु से ये जानना चाहूंगा कि उसको रेडियो के माध्यम से, आवाज के माध्यम से लोगों से जुड़ना कितना अच्छा लगता है, और क्या आपकी आने वाले दिनों में आपका लक्ष्य क्या है, आप किस तरीके से अपनी पहचान आवाज की दुनिया में बनाना चाहते हैं।
6: सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे आज मौका दिया हमारे सभी प्यारे श्रोताओं से इंट्रोड्यूस कराने का, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई और सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मैं बहुत डर गई थी कि क्या पता मैं काम कर पाऊँगी या नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आवाज़ की दुनिया में ये मेरा पहला कदम था। बट जब मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया, सर का भी बहुत सहयोग रहा मेरे लिए, कि कभी मुझे उन्होंने डीमोटिवेट नहीं किया, हर एक चीज़ में मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया, तो बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाला, और इन फ्यूचर मैं अपने आप को आवाज़ की दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई मेरे चेहरे से ना जाने, मुझे मेरी आवाज़ से पहचाने। तो सभी प्यारे श्रोताओं को इस हमारी टीम की तरफ से, रेडियो वितस्ता की तरफ से तीसरे साल की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनु, और आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम में आपने अभी तक आवाज दी, ताकि अगली बार जब श्रोता सुनेंगे तो वो अनु की आवाज के साथ दिल से जुड़े।
6: सर, जो मेरा फर्स्ट कार्यक्रम था जो मैंने प्रस्तुत किया रेडियो पर, वो था आपकी फरमाइश। बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे नेबर्स ने इवन, जो मतलब जिन्हें पता भी नहीं था मैं यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में एज अ इंटर्न काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझे खास तौर पर पास आकर मुझे बुलाया और बधाई दी और बोला कि हमें तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगी। मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी आसमान पे हूँ, जमीन पे तो मैं हुई नहीं। उन्होंने बोला कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैंने कृषि समाचार किया और अपना मॉर्निंग की अनाउंसमेंट्स की, जो भी हमारी मॉर्निंग अनाउंसमेंट रहती है, और अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में जुड़ पाऊँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनु और कृष्णा, और आप लोग हमारे श्रोताओं तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। हम जब किसी बात की प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद स्ट्रीमिंग करना, और आप दोनों मिलके करते हैं, और हम सबका सहयोग है। टीम रेडियो वितस्ता की ओर से मैं सभी श्रोताओं को एक बार फिर हमारी तीसरी वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और अंत में एक एक बार मैं आप सभी से श्रोताओं को का संदेश जो है वो आपसे चाहूंगा, और उसके बाद हम इस लाइव कार्यक्रम का समापन करेंगे। बनमाली जी, संक्षिप्त में।
2: सभी श्रोताओं के लिए बेहतरी और खुशहाली, मानसिक भी और अन्यथा भी, के लिए जरूरी है कि अपने आप को व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और रेडियो वितस्ता को अपना माध्यम बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मैं रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये आशा करता हूं कि हमारे श्रोताओं को कभी भी हमारे प्रोग्रामों से निराशा नहीं होगी। उनको हम बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम, जो कि उनकी रुचि अनुसार हो, वो हम देते रहेंगे। धन्यवाद।
0: जी विजय शर्मा जी,
3: रेडियो विदस्ता हमारे अम्बाला का खुद का चैनल है, हमारे शहर का चैनल है। रेडियो विदस्ता के सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से एक ही बात कहना चाहूंगा कि सुबह शाम से शाम तक मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत,
0: वंदे मातरम। जी आप दोनों का
5: सभी श्रोताओं को फिर से एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रिया। आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहे, आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ रहे। थैंक यू।
6: सभी श्रोताओं से मेरी एक ही प्रार्थना है कि इस रेडियो स्टेशन से जुड़े रहें ताकि मुझ जैसी युवताओं को या लड़कियों को मौका मिले ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर अपने सपने पूरे करने का।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं से मैं अब लेता हूं आज्ञा और एक वादे के साथ कि हम जब चौथी वर्षगांठ पर आपसे मिलेंगे, हमारे प्रसारण में समय की जो समय है वो बढ़ा

शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने दिल के भाव आज आप सभी के साथ साझा किए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना फीडबैक आप हमें जरूर भेजिए हमारे नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं शब्दों के साथ आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, उन्नत रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।
1: चार पैसे क्या मिले क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा वो खुदा ही जाने, अब होगा तेरा अंजाम क्या।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अंबाला की संस्था वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था, भारत सरकार की स्वीकृति के बाद। लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था, 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद ये सामुदायिक रेडियो आकाश पर एफएम 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगु के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत हैं। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नू और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें
कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहिए। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम। गीत गुफ्तगू और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: परिवार सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और रमेश जी आपको मेरी प्यार भरी नमस्ते।
1: जी बहुत बहुत नमस्ते और आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्योंकि आज पहले मैं पहुंचा हूं स्टूडियोज में।
0: जी बिल्कुल सही कहा, आज मैं थोड़ी लेट हो गई।
1: आप गए थे पानी पीने।
0: जी
1: है ना जी।
0: जी
1: इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहुंच जाऊं और मैं आपका स्वागत करूं।
0: जी मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा लगा ना जी।
0: जी बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी तो बताइए आज किस टॉपिक पे बात होगी।
0: जी आज हम बच्चों में किस तरह से आत्मविश्वास पैदा करें, इसी बारे में आज हम बात करेंगे।
1: अंग्रेजी का एक शब्द है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत जरूरी है। बच्चे काफी ज्यादा शाइनेस फील करते हैं, लेकिन आजकल वैसे बच्चे बड़े तेज हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: और क्योंकि नेट की वजह से काफी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर भी बहुत जरूरी बनता है कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, और अब मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्राम में एक गीत की जरूरत है।
1: बिल्कुल जी, प्रोग्राम के शुरू में जैसा आप जानते हैं हम तो गाने की बात जब करते हैं तो शुरुआत तो गीत से ही होती है।
0: जी।

0: जैसा अभी हम इस गाने से पहले बात कर रहे थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, बच्चों में होनी चाहिए, और इस पर आप चर्चा करेंगे?
1: जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए ताकि वह जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों पर गौर करने की।
0: बिल्कुल, अपने मन में डर को बाहर निकालना है
1: जी,
0: खौफ को बाहर निकालना है, ये करना है, इस तरह का जज्बा बच्चों में होना चाहिए।
1: जी, देखिए, सबसे ज़रूरी है कि बच्चों की बातों को अनदेखा ना करें, उनको ध्यान से सुने और उनकी बातों में रुचि भी दिखाएं, और बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार करें। कई बार कभी किसी काम के लिए काम को करने के लिए माँ बच्चे को रोकती है, पर दूसरी तरफ पिता उसी काम को करने में बच्चे का साथ देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि क्या सही है और क्या गलत।
0: बिल्कुल सोनू जी, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई माता बच्चे से कोई काम करवाना चाहती हैं और कहती हैं ये काम करिए, पिता का भी साथ मिलना चाहिए उसे, तभी जाके उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ोतरी होगी।
1: जी बिल्कुल। देखिए, जब दोनों तरफ से हाँ होगी तो उसे पता चलेगा कि ये काम सही है और ये मुझे करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जहाँ तक हो सके बच्चे को झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश ना करें, उसे आप अपनी परेशानियों मजबूरियों से अवगत कराएं, इससे बच्चे में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, और ये भी उसमें विश्वास होगा कि आपने उन्हें अपनी प्रॉब्लम से अवगत करवाया है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स में शामिल किया
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। देखिए, एक तो हम कहते हैं कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है, उनके माता पिता, उसके बाद स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनके गुरु बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप का सबसे बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की बेहबूदी के लिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर कोई घर में आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो बेटा बाहर आता है और पिताजी उसको कहते हैं कि बोलना वो यहाँ नहीं है, तो यानी झूठ जो है घर से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी आदतें हैं जो हम खुद या माता पिता बच्चों में डालते हैं, इनसे बचना चाहिए
1: ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो और हम ये ना कह सके कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं।
0: पहले जमाने में क्या होता था, अब तो वैसे काफी हद तक सिगरेट लोग पीना छोड़ गए हैं, और लेकिन पहले जमाने में सिगरेट की डिब्बी जो लानी है, बच्चे को पैसे पकड़वाते थे और बाजार से सिगरेट की डिब्बी आप लाइए, ये आदत भी गलत है। और मैंने देखा है कि इस तरह की जब आदतें जब शुरुआत हो जाती थी तो फिर बच्चे में भी इसी तरह की आदत पड़ जाती थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बच्चों को ज्यादा टोका टाकी भी ना करें, उसके पास आप इतना साथ हो जाएं कि वह अपनी बातें बेझिझक आपसे शेयर कर सके।
0: बिल्कुल, आजकल तो एक ट्रेंड भी है कि बच्चों के साथ आप दोस्त बन के रहिए, है ना जी, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ दोस्त बन के रहिए और उसके बाद हर बात उसे आप साझा करिए।
1: और बच्चा अगर आपका कोई गलती करता है तो आप उसे डांटें या मारे नहीं, बल्कि उसे विश्वास में लेकर प्यार से समझाने की कोशिश करें।
0: अरे, तो हमने तो काफी डांट खाई है, हमने मार भी खाई है, लेकिन आजकल माता पिता में उस तरह की हिम्मत नहीं होती है कि बच्चे को मारें। आजकल बच्चे जो हैं बॉडी बिल्डर्स होते हैं।
1: जी देखिए, वो तभी बॉडी बिल्डर्स बनते हैं जब हम छोटे, जब वो होते हैं, अच्छे संस्कार उनको नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल, ये आपने सही बताया है कि बच्चे को कभी डांटिए नहीं और किसी के सामने ना डांटिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसके बाद बच्चा कोई भी जब किसी के सामने आप उसको डांटते हैं तो कोई भी स्टेप उठाने पे वो मजबूर हो जाता है, इसलिए बच्चे के साथ रहिए दोस्त बनकर।
1: और एक बात और कहना चाहेंगे, उन्हीं घरों के बच्चे कम आत्मविश्वासी बनते हैं जिनके पेरेंट्स में आपस में अनबन होती है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना होगा एक दूसरे के साथ।
0: माता पिता को चाहिए कि बच्चे के सामने झगड़ा ना करें।
1: जी बिल्कुल,
0: और ये बहुत जरूरी है। काफी बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ हमें रुकना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, रुकना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है।
0: जरूरत है एक गाने।

0: जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना जी, बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, जैसे शब्द का हमने इस्तेमाल किया कि बच्चे के साथ दोस्त बनकर रहिए, तभी जाके आपका बच्चा तरक्की कर सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है।
1: जी बिल्कुल सही,
0: ये बहुत जरूरी है।
1: और अब हम आगे चलेंगे और लहसुन की बात करेंगे। देखिए, लहसुन को कच्चा खाने से शरीर में के कई लाइलाज जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। हर रोज लहसुन की 2 या 3 कच्ची तुरियां खाली पेट खाने से खून में बड़ी चर्बी है जो वो पतली हो जाती है।
0: आमतौर पे जो जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए कहा गया है कि अगर इस तरह का आप इस्तेमाल करें तो आपके वो जो खून है उसमें पतलापन आएगा और आपकी नाड़ियों में वो खून ठीक ढंग से चलता रहेगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, इससे खून भी साफ होता है, दमा, खून में अगर आपके शुगर है, मानसिक तनाव है, सिर दर्द है, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, बदहजमी जैसे कई रोग ठीक हो जाते हैं अगर हम डेली रूटीन में कच्ची तुरी खाते हैं 2 या 3।
0: जी, हालांकि मैंने सुना था कि सुनो जी कि इसको भून के अगर खाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने सही खाई, लेकिन देखिए, भूनकर दाल या सब्जी में
0: ये
1: डालने
0: बात
1: से
0: मैंने
1: इसकी
0: सही खाई नहीं बल्कि सही कही। जी
1: देखिए, लहसुन को तड़के में आप भूनकर दाल और सब्जी में डालने से देखिए, इसकी खुशबू और तीखापन तो खत्म हो जाता है। और आपने सही कहा कि जो दाल सब्जी है वो तो स्वाद बन जाती है, पर इसके जो औषधि गुण है वो खत्म हो जाते हैं।
0: और ये एक प्राचीन, इसको हम मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो दवाइयाँ बनती हैं ना जी, उसमें लहसुन को इस्तेमाल में लाया जाता है। और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है अगर आप लहसुन ले लें। इसलिए हर सब्जी में, यहाँ पे इस एरिया में, हर जगह लगभग लहसुन लेते हैं।
1: देखिए, बिना गर्म किए लहसुन का जैम बनाकर सेवन किया जा सकता है, जिससे कि लहसुन के जो औषधि गुण है वो बरकरार रहेंगे।
0: बिल्कुल, लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
1: देखिए, आप जैम बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं हम बताएं?
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए, 250 ग्राम आप लहसुन की तुरियों को अच्छी तरह बारीक पीसकर शीशे की खुली मुंह वाली शीशी में डालकर उसमें 250 ग्राम आप शहद डालें और आपका जो जैम है वो तैयार हो जाएगा। और लहसुन के जैम में आप 50 ग्राम अदरक भी बारीक करके डाल सकते हैं, टेस्ट दुगना हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, और ये आपको फायदा दे सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताई हमें कि लहसुन के जो फायदे हैं बहुत जरूरी है, लेना चाहिए लेना चाहिए। हम आपको एक गाना सुनाते हैं।

0: हैं जी, और लेना चाहिए। बहरहाल आज आप हमें क्या खिलाएंगे?
1: जी, आज हम खिलाएंगे गाजर का हलवा।
0: गाजर का हलवा आमतौर पर सर्दियों में ही खाया जाता है,
1: जी
0: क्योंकि सर्दियों में गाजर ज्यादा उपलब्ध रहती हैं और सस्ती रहती हैं।
1: और ये
0: जी
1: बहुत पौष्टिक भी होते
0: हाँ जी
1: हैं।
0: हाँ जी
1: देखिए, गाजर का हलवा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो कुछ इस तरह से है। गाजर आप 1 किलो लीजिए, चीनी 250 ग्राम, खोया 250 ग्राम, दूध आप 1 कप लीजिए, देसी घी 1 टेबल स्पून, किशमिश 1 टेबल स्पून, काजू 10-15 ग्राम कटे हुए लीजिए, नारियल 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ, या आप कटा हुआ भी ले सकते हैं, छोटी इलायची 5-6 पीसी हुई लीजिए। ये थी सामग्री। अब विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों को धोकर छील लें तथा इसे इन्हें कद्दूकस कर लें। खोया कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भून लें। भुना हुआ खोया एक प्याले में डालकर रख लें। कद्दूकस की हुई गाजर कढ़ाई में डालकर गैस पर रखें और इसमें दूध डालकर मिला लें। गाजर को नरम होने तक पकने दें और इसमें चीनी मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हिलाते रहें। गाजर अपना रस छोड़ने लगे, हर 2 मिनट के बाद उसे आप हिलाते रहें ताकि वह नीचे ना लग जाए। रस सूखने तक उसे आप अच्छी तरह पका लें। पकी गाजर में घी डालकर उसे भून लें। अब किशमिश, काजू और खोया मिला लें और 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर हलवे में पिसी इलायची मिला दें। हलवे को प्याले में निकाल लें तथा इसे कद्दूकस से किए हुए नारियल से सजाकर गरम गरम या ठंडा परोस सकते हैं।
0: अगली बार जब आप घर जाएंगे, घर से आएंगे, तो ये जरूर बनाइएगा और हम खाना चाहेंगे,
1: जी बिल्कुल, जरूर
0: एक साथ हम
1: खिलाएंगे।
0: खाएंगे। बिल्कुल, ये तो आजकल बड़ा आप बता रहे थे ये सारी बातें और हमारे मुंह में पानी आने लगा था।
1: जी, आपका स्वाद अगली बार चेंज
0: जी
1: हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गाजर का हलवा मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि हमारे किसी लिसनर ने हमें बताया था, खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में, कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, इस पर आप चर्चा जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: लेकिन
0: मैं
1: जाते जाते
0: जाते जाते
1: खूबसूरत सा गाना।
0: बिल्कुल जी, गाना मैंने तैयार रखा है जी, गाना हम आपको सुनाते हैं और मुझे आप इजाजत दीजिए।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
3: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो वितस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो दस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: तुसी सुन रहे हो अम्बाला दा अपना रेडियो।
3: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
2: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदारा मेनू 90.0 में।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अम्बाला की संस्था वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया।

आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था भारत सरकार की स्वीकृति के बाद, लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद ये सामुदायिक रेडियो आकाश पर FM 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगु के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत हैं। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नू और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहिए। कुछ पंक्तियां सुनाता हूं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम। गीत, गुफ्तगू और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा
कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अंबाला की संस्था वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था, भारत सरकार की स्वीकृति के बाद, लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था, 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद यह सामुदायिक रेडियो आकाश पर एफएम 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगू के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत है। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नु और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें
कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहे। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम। गीत गुफ्तगु और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां ते नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदारा मेनू 90.0 मेगा।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, मैं हूं भारत सोपोरी, आपका रेडियो दोस्त। लेकर आया हूं वितस्ता गीतमाला एपिसोड 3। आज का ये एपिसोड आधारित रहेगा देश विदेश के जाने माने और अंबाला की शान आदरणीय नफ्स अंबालवी साहब के एक कविता संग्रह सराबों का सफर पर, जहां हम आपको सुनाएंगे नफ्स साहब के लिखे शेर और उनके साथ जुड़े नगमे, गीत और गजलें। पर उससे पहले आपको बताऊं कि सराबों का सफर के मायने क्या है। वो रेत जो गर्मियों में दूर से पानी की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और प्यासे उससे पानी समझकर उसकी ओर दौड़ते हैं, या यूं कहें ए जर्नी ऑफ मिराजेस। इस शायर की पंक्तियां हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्यों में कही है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमां कुछ कम है। ये काव्य संग्रह नफ्स अंबालवी साहब ने अपनी बेटी आकांक्षा के नाम किया है। मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मेरे हिसाब में कुछ नेकियां निकल आई। इस काव्य संग्रह पर देश के कई विद्वानों ने अपनी शाबाशी दर्ज की है नफ्स अंबालवी साहब के लिए। मुनव्वर राणा साहब लिखते हैं, शायद यही सबसे बड़ी खूबी नफ्स अंबालवी के कलाम में है। दिल्ली और लखनऊ की जुबां और मुहावरों को हरियाणा में बैठे हुए शायर ने जिस एहतराम और जिम्मेदारी से भरता है, वो काबिले सिताइश है। नफ्स अंबालवी साहब के कुछ शेर पर उन्होंने नजर डाली है। अब तक तो इस सफर में फकत तशनगी मिली, सुनते थे रास्ते में समंदर भी आएगा। मुजफ्फर रजमी साहब लिखते हैं, नफ्स अंबालवी को असर हाजिर के गजल को शायरों में इम्तियाजी हसियत अता करती है। उनके ये शेर उनकी शायरी की बुलंद परवाज की अलामत है। लिखते हैं नफ्स अंबालवी के कुछ शेर। फिर एक बार समंदर तेरा उड़ाएगा मजाक, निकल पड़ा हूं मैं कागज की कश्तियां लेकर। मेरे ख्याल की परवाज बस तुम ही तक थी, फिर उसके बाद मुझे कोई आसमान न मिला। उसने पुरखों का मकान बेच तो डाला, लेकिन देर तक फिर दरो दीवार से मिलकर रोया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विदस्ता गीतमाला और आज का कार्यक्रम आधारित है नफ्स अम्बालवी साहब के एक कविता संग्रह सराबों का सफर पर। आइए कुछ और कविताएं आपको सुनाते हैं। नफ्स अम्बालवी साहब लिखते हैं, घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता। तेरी अजमत है तू चाहे समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता। जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, मुझसे कोई भी हो प्यासा नहीं देखा जाता। यह इबादत है, इबादत में सियासत कैसी, इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता। मेरे लहजे पे न जा, कॉल का महफूम समझ, बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता। दिल में एक हुक सी उठती है, रुला देती है, हमसे रोता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता। लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता। गम की बाजार में कीमत नहीं पूछी जाती, दर्द महंगा है कि सस्ता नहीं देखा जाता। अक्स उभरेगा नफ्स, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता।

चांदनी चुप थी, शबे गम के सितारे चुप थे, जो भी उस रात गवाहों में थे सारे चुप थे। देखिए वक्त की साजिश कि चिनारों के तले जितने लम्हे तेरे साथ गुजारे चुप थे। चांद का अक्स भी अफसुरदा सा था पानी में, खामोशी झील पे तारी थे शिकारे चुप थे। दिल में एक शोर तमन्नाओं का बरपा था, मगर लब मुकफ्फल थे निगाहों के इशारे चुप थे। लोग जिस नाम को बेताब थे सुनने के लिए, हम उसी नाम की रुसवाई के मारे चुप थे। बेगुनाही मेरी इंसाफ से महरूम रही, मुझको जिन जिन पे भरोसा था वो सारे चुप थे। मेरी आंखों में वो मंजर है कि जाता ही नहीं, जब सफीना मेरा डूबा तो किनारे चुप थे। बेहुनर लोगों में बढ़ते रहे एजाज, मगर जिनकी रौनक थे नफ्स, हम वो इदारे चुप थे।

आपका कतरा हूँ, जिद पर आ गया हूँ, दहर पर सैलाब बनकर छा गया हूँ। कीमती सामान हूँ इस घर का, लेकिन भूल से जाने कहाँ रखा गया हूँ। सोचता हूँ गाऊं वापस लौट जाऊं, शहर से कुछ इस कदर उकता गया हूँ। धूप थी तो अपना साया हम सफर था, धूप डलते ही बहुत घबरा गया हूँ। घर से खुद को ढूंढने निकला था, लेकिन बेखुदी में आपके घर आ गया हूँ। गम छुपा भी लूं तो आंखें बोलती है, और मैं हर मर्तबा पकड़ा गया हूँ। एक मुद्दत से मैं तन्हा जी रहा था।

कभी सहरा नहीं देखा, निकले हैं तो दीवार का साया नहीं देखा। एक अश्क पर हैरान ना हो आंखों में हमारी, तुमने अभी ठहरा हुआ दरिया नहीं देखा। शायद कि वो लौट आया समंदर के सफर से, पहले कभी इतना उससे प्यासा नहीं देखा। पत्थर भी अगर मोम ना हो जाए तो कहना, तुमने मेरे सजदों का सलीका नहीं देखा। मुमकिन है मैं अब खुद को भी ना पहचान पाऊं, एक उम्र से आईने में चेहरा नहीं देखा। मैं सर पे कफन बांध के जिस दिन से चला हूं, तब से मेरी कश्ती ने किनारा नहीं देखा। जुगनू के चमकने से भी डरते हैं यहां लोग, इस शहर ने मुद्दत से उजाला नहीं देखा। उसने कई मासूम बशर कत्ल किए हैं, उस शख्स के सीने पे वो तमगा नहीं देखा। तुम बीट का मरकज तो बने फिरते हो, लेकिन तुम सा भी नफ्स शहर में तन्हा नहीं देखा।

इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010 7056413010। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद।

सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 3। आज का कार्यक्रम आधारित था श्री नव संबालवी के काव्य संग्रह सराबों का सफर पर। एडिट किया दीपक कश्यप ने, रिकॉर्ड डायरेक्ट और पेश किया भारत सपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अम्बाला की संस्था वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था, भारत सरकार की स्वीकृति के बाद, लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था, 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद यह सामुदायिक रेडियो आकाश पर एफएम 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगु के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किन्हीं के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत हैं। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नू और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें
कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहिए। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम, गीत गुफ्तगू और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ये यात्रा एक लंबे संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। इस सामुदायिक रेडियो को अंबाला की संस्था वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड चलाती है, जो पिछले 13 वर्षों से मंच और अभिनय में अपना कार्य कर रही है और आज तक लगभग 170 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 1 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था, भारत सरकार की स्वीकृति के बाद। लेकिन इसका सपना और बीज इससे बहुत पहले बोया गया था, 31 अगस्त 2018 को, जब इसने एक वेब और इंटरनेट रेडियो के रूप में काम करना शुरू किया था। 5 वर्षों की कठिन मेहनत, अनुभव और निरंतर प्रयासों के बाद ये सामुदायिक रेडियो आकाश पर एफएम 90 के माध्यम से गूंज उठा। दोस्तों, इस रेडियो ने अब तक कई रंग बिरंगे और उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वितस्ता गीतमाला के माध्यम से हमने बहुत से विद्वानों और लेखकों की कविताएं, गजलें आप तक पहुंचाई संगीत के साथ, और संगीत प्रेमियों को पुराने गीत और गजलों के साथ जोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना ने देशभक्ति की भावना जगाई और देश के वीरों से आपको रूबरू कराया। फौजी भाइयों के लिए से हमने अपने वीर जवानों को सम्मान दिया और उनके अदम्य साहस, उनके समर्पण की गाथाएं आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम इनसे मिलिए और गुप्तगु के जरिए समाज की प्रेरणादायक हस्तियों को आप तक पहुंचाया। किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट ने ज्ञान और विचारों का नया आयाम प्रसारण में जोड़ा। हरियाणवी सुगम और लोक संगीत के जरिए लोक कला और संस्कृति को सजाया संवारा। कृषि समाचार से किसानों को समय समय पर उपयोगी जानकारी देते रहे। हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चले के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और जीवन की खुशबू आप तक पहुंचाई। हाशिए पर जैसे कार्यक्रमों से हमने समाज के अनसुने स्वर और हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई और उनको आवाज दी। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम रहे जिन्होंने हमारे श्रोताओं के दिलों को छुआ और ज्ञान, मनोरंजन तथा जागरूकता का अनमोल संगम रचा। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके प्रेम, विश्वास और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा होता। आप ही इस रेडियो की असली ताकत हैं। साथ ही हम अपने गुरुजनों का नाम भी लेते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गुरुजी माननीय श्री रमेश मराठा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए और अपनी सुनहरी आवाज से हमारी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए। साथ ही आदरणीय नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। हम अपने फाउंडर डायरेक्टर्स का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव एवं फाउंडर डायरेक्टर भारत सोपोरी जी है और सुश्री किरणी दास जी का, जो हमारी चेयरपर्सन भी है। इन फाउंडर डायरेक्टर्स के सपनों और अथक प्रयासों ने रेडियो वितस्ता को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। और साथ ही कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आप तक प्रसारण पहुंचाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इस वर्ष कुछ और इंटर्न भी जुड़े, जैसे नैना, और कुछ दिन पहले ही रेडियो वितस्ता टीम के साथ जुड़ी अन्नू और कई सारे। हमारी टेक्निकल टीम के अहम स्तंभ अखिलेश दास जी का भी विशेष आभार, जिनके बिना तकनीकी कार्य सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाते। और अंत में हमारी सोसाइटी मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम वादा करते हैं कि रेडियो वितस्ता भविष्य में और भी सार्थक, मनोरंजक और समाज उपयोगी कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रसारण करना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज से जुड़कर उसकी आवाज को और बुलंद करना है। आइए इस तीसरी वर्षगांठ पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें
कि रेडियो वितस्ता हमेशा आपके दिलों की धड़कन बना रहे और हमें प्रेरित भी करते रहिए। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर। हवा में गूंजता है अब हमारा नाम, रेडियो वितस्ता है जनता का पैगाम। गीत गुफ्तगू और सरफरोशी की तान, हर दिल में बसता है इसका नाम। आपके प्यार से है ये सफर आसान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान, यही है हमारी पहचान, यही है हमारी जान। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, श्रोता के तौर पर और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: अजय सुना सरदारा की हाल है।

0: पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते।

और सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर पिघलते रहे भरी दोपहर की तपिश में। मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, और मैं चुपचाप सहता हूं। हे हमें रात की ठंड का इंतजार, क्योंकि यहां तुम्हें मुझे इन गुप्त अंधेरों में शीतलता का एहसास जो है, आओ यहां इन सहराओं में खेले लुक्का छुपी। फिर से बीते दिनों की यादों को

मुस्कुराहट ही हुस्न का जेवर, मुस्कुराना हमें भी सिखा दीजिए। अभी तो बहार की शुरुआत है, पर मौसम बदलने में देर कहाँ लगती है। ये भी शिकवा नहीं कि सब कुछ क्यों सहता रहा। बात इतनी

जब जब तेरा जिक्र होता है महकता हूँ बहकता हूँ भटकता हूँ रूह में उतर जाती हो ख्वाबों की ताबीर बन जाती हो इन हवाओं में मुस्कुराते हो इन फिजाओं में गुनगुनाते हो जब जब भी तेरा जिक्र होता है मैं महकता हूं बहकता हूं

कि धर्मिया अब सिर्फ तुम्हारी परछाई है, जिसे मैं हर पल महसूस करता हूं, बिठाता हूं अपने पास, संवारता हूं, सजाता हूं, बातें करता हूं। गर्ज इश्क था तुम्हारा वजूद, पर फिर भी तुम हमारे न हो सके, और तमाम सफर परछाइयों के साथ ही गुजर गया। ये जमीन चुप, आसमां चुप, मैं

ይደርድ። ንምስክር ያ ሀር ትረፍ ጉጅቲ ሄ ሰዳይ ኢሽቅ ኪ ኦር ቱማሪ አኹ ሜ ጂል ጀሲ ኸሞሺ ኦር ብድልቲ ሞስሙ ኪ ጀለክ ዲካይ ዲቲ ሄ ያ ሀማሪ संग संग बादल तैरते हैं और इन नीले आसमानों में हम खोजते हैं अपनी अपनी वीरान बस्तियां। आक्रोश भी है कि ये बदलते मौसम हमारे कभी क्यों नहीं हुए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्था के प्रसारण, और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आप सभी श्रोताओं को एक बार पुनः हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज रेडियो विदस्ता एफएम 90.0 ने तीसरी वर्षगांठ मनाई, और इसके बारे में हम आपको रिपोर्ट एक आपको बताएंगे, सुनाएंगे आपको अभी। और साथ में हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं और हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी अपने मैसेजेस भेजे हैं। कोशिश करूंगा उनको भी आप तक पहुंचाने के लिए कुछ समय आपका आज जरूर ले लूंगा इस लाइव समापन में। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:17। श्रोताओं, रेडियो वितस्ता 90.0 एफएम के सभी प्यारे और अजीज श्रोताओं को भारत सोपोरी का दिल से बहुत बहुत नमस्कार। और साथियों, आज का दिन रेडियो वितस्ता के लिए कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक और भावुक पड़ाव था। आज हमने पूरे जोश और उत्साह के साथ रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ मनाई आप सभी श्रोताओं के साथ। हमारे स्टूडियो में अंबाला के गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी, श्री ओम बनमाली जी, श्री प्रवीण शर्मा जी और कई सारे हमारे स्टाफ और हमारी टीम के व्यक्ति मौजूद थे। और इस मौजूद के दौरान हमारे पास एक श्रोता के नाते हमारे साथ श्री विजय शर्मा जी थे, जिन्होंने आज का दिन खास बना दिया। इस लाइव कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की जो आप लोगों ने आज दिन भर सुनी, अपने अनुभव हमारे साथ उन्होंने साझा किए, और इसके लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ मैं आपको कुछ और जानकारियां जो है वो भी देना चाहूंगा। और हमारे पास जम्मू से एक बधाई संदेश आया, 90.0 मेगाहर्ट्स रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का के सफलतापूर्वक तीसरे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर संस्थापक निदेशक श्री भारत सोपोरी जी को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं, और उन सभी श्रोताओं को जो रेडियो वितस्ता को सुनते हैं। उन्होंने लिखा है, आपके दूरदर्शी नेतृत्व, समर्पण और समाज के प्रति सकारात्मक सोच ने रेडियो वितस्ता को जन जन की आवाज तथा ज्ञान, संस्कृति, संगीत और सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम बनाया है। बीते 3 वर्षों में रेडियो वितस्ता ने समुदाय को जोड़ने, स्थानीय प्रतिभाओं का को मंच प्रदान करने के लिए सामाजिक सरोकारों को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने साथ में लिखा है कि गत काल में आपने गीता परिवार से मिलकर जो गीता का ज्ञान अपने दर्शकों को दिखाया, वो भी एक उत्तम कार्य है जिसके लिए आप बधाई के पात्र है। ईश्वर से प्रार्थना है कि रेडियो वितस्ता निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें तथा आपके मार्गदर्शन में समाज सेवा का ये अभियान और अधिक प्रभावशाली बने। ये जानकारी हमारे पास भेजी है मीनाक्षी दीदी ने, जो उत्तराखंड गीता परिवार की और उत्तरांचल गीता परिवार की इंचार्ज है। और भी बहुत सारे मैसेजेस आए, और एक मैसेज मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा। एक कविता हमें लिख के भेजी है डॉक्टर हमारे पास कैथल से, डॉक्टर तेजेंद्र सर ने, वो कविता मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा। उन्होंने कविता रेडियो वितस्ता की वर्षगांठ पर लिखा है, रेडियो वितस्ता की वर्षगांठ है, रेडियो वितस्ता की वर्षगांठ है, आज इसकी तीसरी वर्षगांठ है, सबको बधाई, हम सबको बधाई। आज ही के दिन वितस्ता आया था, अंबाला की फिजा में नया रंग लाया था, इसकी आवाज का जादू छाया था, इसका अंदाज सबको भाया था। आज ही के दिन थी नई सुबह आई, सबको बधाई, हम सबको बधाई। वितस्ता की पोटली में गीत पुराने, साथ में हमने सुने बातें और तराने, आते हैं कवि शायर महफिलें सजाने, जिंदगी का फलसफा हमें समझाने, वितस्ता ने जीने की राह दिखलाई, सबको बधाई, हम सबको बधाई। वितस्ता है फैमिली मेंबर हमारा, जी हां, वितस्ता है फैमिली मेंबर हमारा, वितस्ता को सुने बिना
नहीं है गुजारा, तन्हाई में वितस्ता है सबका सहारा, उदासियों के आलम से उसने उभारा। वितस्ता सुन जीवन ने ली अंगड़ाई, सबको बधाई हम सबको बधाई। डॉक्टर तेजेंद्र सर कैथल हरियाणा से हमें इन्होंने ये कविता लिख के भेजी है, हम आपके बहुत आभारी हैं। और अगर कविता की बात करूंगा तो आज जो हमने स्टूडियो में हमने जो आज उत्सव मनाया उसमें डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी ने भी एक कविता यहाँ पर गुनगुनाई, हमें सुनाई, और रेडियो वितस्ता के सभी टीम मेंबर्स को, हमारे सभी श्रोताओं को, संचालकों को उन्होंने उस कविता में बधाई दी। उसका हमने एक वीडियो तैयार किया है, हमने ग्रुप में वीडियो डाला है, तो आप जरूर देखिएगा या आप सीधा YouTube पे जाइए रेडियो वितस्ता की, आज उस वीडियो को सर्च करिए और उसका जो टैग है वो है 3rd anniversary, आप जरूर वो वीडियो देखें। उसमें जितने भी हमारे पास स्टूडियो में आज हमने जो सेलिब्रेशन किया उसके बारे में उस पूरी की पूरी जानकारी है। आज लाइव कार्यक्रम में जिस बात ने सबसे ज्यादा दिल को छुआ वो थी अंबाला के लोगों की रेडियो वितस्ता से जुड़ी भावनाएं। किसी ने कहा कि सुबह की चाय की चुस्की रेडियो वितस्ता की आवाज के बिना अधूरी सी लगती है, तो किसी ने बताया कि दफ्तर जाते वक्त की भागदौड़ में यही आवाज उन्हें सुकून देती है। सच कहें तो रेडियो वितस्ता सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि अंबाला के घर घर का एक अपना सदस्य बन चुका है। एक ऐसा हम सफर जो सुख दुख त्योहार उत्सव हर मौके पर आपके साथ खड़ा रहता है, जिस तरह जीवन कभी रुकता नहीं है, हमेशा आगे बहता रहता है, ठीक उसी तरह रेडियो वितस्ता भी आपके जीवन के इसी प्रवाह का हिस्सा बनकर हर पल आपके साथ बहने का प्रयास करता रहता है। 3 साल का ये सफर आपके प्यार और भरोसे के बिना संभव नहीं था, और इसी भरोसे की बुनियाद पर हम आने वाले कई और वर्षगांठ मनाने का वादा करते हैं। एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं को रेडियो वितस्ता की 3री वर्षगांठ की हार्दिक बधाई, और इसी खुशी के मौके पर आज का दिन देश के लिए भी गर्व का दिन है। ठीक आज ही के दिन यानी 1 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की ऐतिहासिक लैंडिंग साइट को औपचारिक रूप से शिव शक्ति का नाम दिया था। ये नामकरण सिर्फ एक जगह का नाम नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आध्यात्मिक विरासत और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनकर भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि संकल्प और मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। शिव शक्ति नाम में जहां शक्ति और शिव सहार और स्थिरता का प्रतीक है, वहीं शक्ति ऊर्जा और सृजन है, और यही दोनों तत्व भारत के इस अंतरिक्ष अभियान की सच्ची भावना को दर्शाता है। जी हां दोस्तों, एक और बात आप सभी से करना चाहता हूं। विनय जो ट्रस्ट है, डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जो चलाते हैं, वो हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। वे थिएटर ग्रुप के लिए आज उन्होंने 5,000 रुपए की राशि अनुदान में दी, और उसी अनुदान राशि से हम आप सभी तक अलग अलग कार्यक्रम पहुंचाते हैं। हम आपके लिए नाटकों को तैयार करते हैं और बहुत जल्द वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी एक नाटक की तैयारी करने जा रहा है, जिसका मंचन हम दिसंबर तक अंबाला में जरूर करेंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप रेडियो वितस्ता का एक साथ दीजिए और इसका हिस्सा बनिए और इसको अपनी जिंदगी का भी हिस्सा बनाइए। तो ये था आज का विषय, आज की जानकारी, आज की रिपोर्ट। तो आइए 3री वर्षगांठ के इस खुशी और चंद्रयान की उपलब्धि को समर्पित ये पंक्तियां आप सभी के लिए। आज की पंक्तियां यूं है, 3 बरस का सफर ये यूं ही मंजिल तक नहीं पहुंचा, 3 बरस का सफर ये यूं ही मंजिल तक नहीं पहुंचा, हर श्रोता के प्यार ने वितस्ता को अपने
घर में बसा लिया। धरती से जब चांद तक का हौसला परवान चढ़ा, धरती से जब चांद का हौसला परवान चढ़ा, तब शिव शक्ति के नाम ने हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित किया। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की पंक्तियां, और जल्दी से मैं आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 2 सितंबर 2026 बुधवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत और साथ में आपके लिए लाएंगे एक सुविचार। 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर कार्यक्रम सुनहरे पल, 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 30 होगा और शीर्षक होगा आत्मकथा। 9:30 दोस्ती अनमोल एपिसोड 1 पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 10:05 पर आप सुनेंगे काव्य गोष्ठी पंजाबी में एपिसोड 7। हमारे साथ होंगे मिस जोबन चीना, पेश करेंगे आरजे सेजल, और 2 बजे आप सुनेंगे पिछले शुक्रवार का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का पुनः प्रसारण। 6 बजे भक्ति संगीत और 7 बजे फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 1 होगा, पेश करेंगे नरेश शर्मा, और 8:30 सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा, और कल की कड़ी है मुझे ले चलो। आज एक सुझाव आया है जिसमें यह कहा गया कि प्रसारण का समय बढ़ाया जाए, हम इस पर काम करेंगे, हम किसी एक और कार्यक्रम का निर्माण करेंगे, उसको तैयार करेंगे, जब उसके कुछ एपिसोड तैयार होंगे हम जरूर आपके सुझाव को सर आंखों पर रखते हैं, और आज हम ये घोषणा भी करते हैं आने वाले दिनों में हम इस प्रसारण का समय जरूर बढ़ाएंगे, आपको जानकारी जरूर देंगे 1 हफ्ता पहले। तो साथियों, एक बार फिर आप सभी को रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका साथ आपका प्यार यूं ही बना रहे। कल फिर मिलेंगे नई बातों नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, और कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।